उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

101 FM。No mind, Cali. Summer, come on, hey.

आप सुन रहे हैं FM 101 अबल बल्ले जबो शाबा।

0: Righto. In the name of Allah, the merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum. And of course, Assalamu alaikum, Ahle Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. Aur janab, kaise hain tamam log? Yakeenan theek thaak hain. Wale fit hain, mazay mein hain. Khoob enjoy kare apni zindagi ko. Well, mujhe kehte hain Sahil aur mere saath maujood hain. Assalamu alaikum.
1: Mic band kar diya kare. Subah subah aate mujhe gussa chadha diya kare. Mera blood
0: pressure. Are mujhe bolna tha na. One and only wo bolne nahi de. Chale theek hai. Ek aam si shakhsiyat mere saath maujood hain. Khaas main hoon.
1: Mere bas kar de bas. Main apna introduction. Assalamu alaikum listeners, hope you're doing well. I'm so sorry. मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं इतना कामली जब साहिल के साथ शो करूंगी तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी. ये शख्स आप सोच नहीं सकते, आप तो कहते ना ये आपकी कॉल काट देता है, ये मेरा माइक बंद कर देता है. क्या मेरा दुख है जो आप अपने दुख की बात कर दी? आप सोचे
0: यार कितने कोई फजूल बात है ये कि मैं किसी का माइक क्यों बंद करूंगा. भाई मैं कौन होता हूँ किसी का माइक बंद करने वाला?
1: क्योंकि आप पैनल पे बैठे हुए
0: जी.
1: आप जितने भारी
0: भरकम पहले तो मैं पैनल पे नहीं बैठा हुआ. अगर मैं पैनल पे बैठा होता तो पैनल टूट चुका होता.
1: सही अल्फाज में पैनल पर बैठना ही कहते. आपको उर्दू नहीं आती? आप कहां से, कौन से स्कूल से पढ़े हुए? आप पैनल के पास बैठे
0: रोशनी पब्लिक,
1: उन्होंने आपको सही रोशनी नहीं दी है?
0: मुझे और सब सवेरे तो वैसे ही अंधेरा होता है. बहरहाल जी जिंदगी में मेरी थोड़ा सा ऐसा रहता है जब मैं आ रहा होता. आज की ताज़ा खबर, फिर मेरी बाइक की चेन जो है वो गड़बड़ कर गई, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आराम आराम से मैं आगे आ रहा था तो एक भाई वो जो बाइक सही करने वाले होते हैं वो बैठे हुए थे, फिर उन्होंने बाइक की चेन वो भी ना मुझे जाते हुए तो देख रहे थे तो यूं देख रहे थे
1: कि ये
0: चेन ठीक करा ले भाई, तो चेन ही खराब है. तो उन्होंने फिर मैं रुका, फिर उन्होंने आकर भाग खुद ही आए वो लेकर, डायरेक्ट बैठ गए चेन ठीक करने. मसला ये है कि जब मैं आधा रास्ता इस्लामाबाद का तय कर लेता हूँ तो ये मसले
1: आना भारी
0: जो भी समझ लें आप, लेकिन भारी कुछ जरूर है मेरे अलावा भी.
1: नहीं वैसे हाँ मुझे
0: भाई देवी तेरी शर्ट बहुत अच्छी
1: है. मैं दिल चाह रहा था कि मैं 14 अगस्त के करीब पहनूं, फिर मैंने कहा रिबेका What a conjusi. If you have a shirt, why don't you wear it? क्यों इंतजार कर रही हो 14 अगस्त पे पहननी
0: है? रोजाना ही हमारा ही 14 अगस्त है ना? सही बात है.
1: Actually, white मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आमतौर पर white को ये इस तासुर में लिया जाता है कि इसमें आप बहुत दुबले पतले लगते हैं और but I really like white. अच्छा खैर रानिया मुझे ये बताएं वो जो चेन होती ऐसे आती है?
0: हाँ जी ऐसे ही आती है.
1: वो वाली खराब हुई है?
0: जी वो खराब नहीं हुई, एक्चुअली वो लूज हो जाती है. जब वो लूज हो जाए ना तो वो खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ करती है फिर पांव के नीचे.
1: चलती है बाइक?
0: बाइक चलती है लेकिन खड़ खड़ करती है. लेकिन अगर वो खड़ खड़ के दौरान के अटक के टूट जाए तो बाइक गिर सकता है क्योंकि वो चेन फंस जाती है ना फिर. तो जब गिरेगा तो ऑब्वियसली जो बैठा बाइक पे वो गिरेगा उसको लगेगी. तो इस वजह से एहतियात करनी चाहिए. इसीलिए हम जो रोज आना लोगों को कहते हैं जी एहतियात करें, गाड़ी में पानी चेक करें, हवा चेक करें, चेन चेक करें अपनी मोटरसाइकिल की चीजों की, लेकिन हम खुद शायद थोड़ी सी गफलत बरत देते हैं.
1: अच्छा एक और सवाल भी
0: जी
1: है.
0: जी
1: जब अगर वो
0: मैं कहने को
1: नहीं ना, मुझे बताया ना मैं एक्चुअली इस मसले तक पहुंचना चाह रही हूँ
0: जी,
1: तो मैं मशवरा दूंगी ना मुझे मसला उतार के तो मैं मशवरा देखिए
0: और भी तो दोस्त हैं बाइक वाले
1: नहीं जी देखिए वो उनकी चेन कभी खराब नहीं होती बाइक की, वो तसल्ली से आते हैं. नहीं वो जो अब वो खराब हो गई है वो बार बार क्यों लूज हो जाती है? मतलब किसी और फंक्शन में मसला आ रहा है बाइक के या उस चेन को पूरा चेंज करा रहा
0: है? नहीं मैं आपको बताऊं होता ये कि इसका एक होता है चेन गरारी का सेट.
1: हाँ देखिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मेरे को.
0: वो लगा होता है हाँ. वो जब थोड़ा सा लूज हो जाए खराब हो जाए ना, क्योंकि एक देखिए एक चीज यूं टाइट हुई हुई है
1: जी, जी,
0: उसमें चेन टाइट की हुई इन्होंने. अब वो गरारियां जो है वो हिलती हिलती थी, थोड़ी सी लूज हो जाए थोड़ी क्लोज हो जाए तो चेन तो लूज हो जाएगी
1: जी. ठीक है
0: अब वो चेन गरारी का सेट अगर आप चेंज करा लेंगे तो चेन फिर परफेक्टली चलती है, कुछ महीने अच्छे चलती है, उसके बाद हल्की पुल्की चलाने से लूज होती है, वो टाइट करा लेते हैं. लेकिन जब खड़खड़ खड़खड़ बहुत आवाज आए ना तो इट मींस के फिर वो चेन गरारी वाला सेट जो है वो आपका चेंज होता है, जो कि तकरीबन 1650-1700 रुपए का एक जमाने में था. पता नहीं मैंने कब डलवाया था.
1: अच्छा आपने जो पहले बताया ना आखिर वाली बात आपने पहले की किसी जमाने में था
0: हाँ.
1: मुझे लगा आप कहेंगे अभी है.
0: नहीं नहीं नहीं अब वो चेंज कराना है मैंने, लेकिन बस वही इतनी मसरूफियत टाइम नहीं मिल रहा.
1: अच्छा मतलब चीजों के लिए मैं एक्चुअली इस पर समझना चाह रही थी. मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना यार चेन मसला करी थी वो ने, तो अब हर किसी से ऐसा थोड़ी होता है कि आप
0: नहीं मतलब मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ मुझे कहता भाई जान कम से कम घंटा सवा घंटा मैं अपनी जिंदगी के इतने कीमती वक्त मैं क्यों दूं. वो कहता भाई फिर इसी तरह में कर डालो इसी तरह दे दो मुझे. बड़ा मुश्किल है ये जिंदगी में एक घंटा डेढ़ किसी पर खड़े रह के काम करवाना बहुत मुश्किल है. आप क्या ही कर लेंगे वहाँ बैठ के.
1: हाँ कितना मुश्किल है. अच्छा इस मामले में ना अल्लाह मेरे अब्बू को जिंदगी सेहत दे, मेरे का मेरी गाड़ी का कोई काम निकलता है ना अभी
0: बेटा वो मजबूरी है उनकी
1: गाड़ी नहीं नहीं
0: उनकी मजबूरी है. ये मेरी भी मजबूरी थी जब आपकी गाड़ी खराब होती थी मुझे साथ से धक्के खाने पड़ते थे. तो ये दिस इज ऑल
1: नहीं मैं आपको सही बात बताऊँ अभी जो मैंने गाड़ी ली थी और गाड़ी कोई काम नहीं था फुल सर्विस कराना, उसका ऑयल चेंज कराना अपनी उसके लिए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं छोटी मोटी. तो मेरे बहनों ने मेरे वाले साहब से कहा कि अगर वो अपना चाहे मैं खुद करूँगा. यकीन जाने आप साहिल, वो बंदा सुबह, मेरा भनोई सुबह 10 बजे घर से निकला है, रात को 8 बजे वापस आया. एंड आई मीन लाइक ये क्या है? और वो मुझे कहते, मेरा भनोई मुझे बहना कहता है, कहता बहना कोई बात नहीं, मैंने करना है ना, मैं नहीं करूँगा तो खालू करेगा, खालू नहीं करेगा तो मैं. सो आई रिस्पेक्ट इट. यू आर सो ब्लेस्ड इफ़ यू हैव माशाल्लाह माशाल्लाह टच वुड इफ़ यू हैव अ ब्यूटीफुल रिश्ते आपकी ज़िंदगी में. पता क्या था साहिल, कभी कभी ना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड मतलब इग्नोर कर देते हैं. साहिल दोस्त है तो है और क्या. आप कहते होंगे बीनी काम ही तो करती है, वो बीवी है, उसकी जिम्मेदारी है. या शायद आपके और रिश्ते, जैसे मेरे वालदैन हैं, मेरी बहन है, मेरा भनोई है, मैं सोचूं कि उन्होंने करना है नहीं. कुछ चीज़ें वो मेरे लिए इसलिए करते हैं कि उनको पता है ये करेगी तो उसको मुश्किल होगी, हम करेंगे तो वो मुश्किल हम ले सकते हैं, हम इतनी मुश्किल होगी
0: कर लेंगे, ये इसको करने में क्यों मुश्किल आएगी और इसको परेशानी होगी, वो परेशानी हमारे लिए परेशानी बनेगी. तो इससे बेहतर ये है कि हम उस काम को इजीली कर लें. पता है कि बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है. फैमिली में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, मतलब सके सिबलिंग्स में भी मैंने देखा है कि होता है कि एक दूसरे के काम को एक दूसरे के ऊपर ही फेंका जा रहा होता है.
1: नफरतें देखी है मैंने. हाँ जी,
0: ऐसा ही है. मैंने तो, मेरे तो एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हैं कुछ, खैर बहुत पर्सनल हो रहे हैं. लेकिन कहने का मकसद है कि जो खूबसूरत रिश्ते हैं उनको खूबसूरत बना रहने दें, उनको किसी सूरत ऐसे हालात ना पैदा हो कि वो आपसे दूर हो.
1: जाने तो, ना दे, रोके.
0: जाने ना दे, रोके. और कैसे रोकना है, जरूरी नहीं किसी के पैरी पै जाओ. तुसी अरे आप प्यारे अंदाज में बात करें, कुछ ऐसे एक्ट करें जिससे वो रिश्ते अच्छा फील करें, ये बहुत जरूरी है.
1: इसमें मैं एक और चीज, ये मेरे घर में पिछले 3 दिन से, अच्छा हमारे घर में बड़ा, अगर हमें कोई ऐसा टॉपिक इन सेंस को हम अपने इर्द गिर्द चीज देखते तो हमारे घर में उस पर बात होती है. हमारे घर में ये जो ओपन टॉक है ना, ये बड़ी होती है. हर किसी को अपनी राय देने का खुली डुली आजादी है. सो नो जजमेंट इवन घर पे भी. सो मेरी बहन के एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है, मेरी वालदा का, मेरा, मेरे वालिद साहब का. अच्छा वो क्या है, हमने पिछले कुछ 3 दिनों में, एक फैमिली है हमारे जान पहचान में, उन लोगों में हमने देखा कि कुछ मसाइल बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं और बड़ा हेट एक दूसरे से रिलेटेड ना सामने आया. हम सब बड़े परेशान साहिल कि ये एक साथ रह रहे थे और मतलब देखने में दूर से तो ठीक लग रहा था, लेकिन ऑल ओवर सडन ये सामने चीज़ें इतनी हेट में बन के कैसे आई. फिर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, जो मेरे लिसनर्स तो जानते हैं, मैं तो सालों से इस बारे में बात करती हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट रिश्तों में मोहब्बतें बनी रहना, हमें हमेशा अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम से बाहर
0: निकलना चाहिए. ये बहुत जरूरी है.
1: ये याद रखें, योर कंबाइन या जॉइंट फैमिली सिस्टम इज लाइक, माजरत के साथ, किसी जमाने में शायद चीजें ठीक चलती होंगी, अब सिर्फ नफरतें हैं. एक घर, एक भाई के, एक बहन के 2 बच्चे हैं, एक नंद के, जेठानी के, देवरानी के 3 बच्चे हैं. उन्होंने जो खा लिया, उनका हस्बैंड शायद ज़्यादा अच्छा कमाता है, वो बाहर से ला के खा सकते हैं, तो वो 3 और के लिए 4 और के लिए क्यों लाएगा? कॉस्ट बढ़ गई ना.
0: ऐसे ही होता है. और ये एहसास कमतरी हो जाती है बच्चों को,
1: नफरतें होती है. अब तुम भी ला कर दो, तुम इनके बाप.
0: फिर क्या होता है कि उन हालात में अभी बच्चे छोटे छोटे होते हैं और बंटवारे शुरू हो जाते हैं कि जी हमारा हिस्सा दें, ये करें, हमें पूरा नहीं पड़ रहा. ये
1: सही, आपने देखा लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस क्यों है? मैं सबसे पहले, औरतें, हमारे यहाँ औरतें अंडरस्टैंड नहीं करती हैं. जब आप कंबाइन सिस्टम में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो शायद आप अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ रहें तो वो शायद उस तरह से ना हो. लेकिन इवन सास ससुर के साथ भी शायद इतने मसले नहीं होते, लेकिन जब जॉइंट फैमिली है, देवरानी, जिठानी, तो फलाना तो ढमकाना इकट्ठे रहते हैं. और ये मेरी सालों की ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आज या कल 3 दिन का वाक्य नहीं सुना, मैंने सालों से ये चीज़ ऑब्जर्व की है. जो बहुत घर से दूर रहती है ना ससुरालियों से, वो प्यारी लगती है, वो लगता है वो ज़्यादा फिक्र करती है. लेकिन जो साथ रहती है, शायद वो रोज़ खदमत भी कर रही है, तो उसके बारे में अच्छे अल्फाज नहीं कहे जाते, नहीं बोले जाते, जस्ट बिकॉज के वो फेस आपको करे, आप उसको फेस करें, तो वो नफरतें बढ़ेंगी.
0: इसी तरीके से मैं आपको एक वाक्य बताऊँ, लोगों को शायद थोड़ा सा खुल के बताना ज़्यादा बेहतर है इन मामलों में. कि देखें, कुछ अर्से पहले ना मेरी वाइफ जो है वो आके, उन्होंने घर में एक स्टोरी सुनाई, कहती है हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो देवरानी जिठानी दोनों जो हैं वो एक ही घर से आई और दोनों के बच्चे एक ही क्लास में थे और दोनों के बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे होते थे. कहते पढ़ाई में बहुत अच्छे दोनों बच्चे. कहते जाहिर है फर्स्ट पे कोई एक ही आएगा
1: और
0: एक सेकंड पे आएगा. तो कहती है हमेशा ये होता है कि किसी एक का बच्चा जो है ना वो फर्स्ट पे आ जाता है और एक का सेकंड हो जाता है. उसमें होता ये कि वहां पे एक अजीब सी तलकलामी शुरू हो जाती है दोनों में. और फिर वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहते हैं कि वहां इतने बुरे असरात पड़ रहे होते हैं चीजों के, बच्चे उनके अपने डिस्टर्ब खड़े होते हैं कि ये क्या हो गया मामा इसको हमारी, ये चल क्या रहा है यहाँ पे. तो देखें ये चीज़ें इसीलिए होती हैं कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में. अब क्यों इसके मैं बताऊं कि दो रीजंस हैं. एक तो ये कि देखें बहुत सारे लोगों के लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक भी होता है. वो कैसे ठीक होता है और ये कब होता था, ये एक ज़माने पहले की बात है जब पेरेंट्स का एक बाकायदा रूप था. एक ऐसी पेरेंट्स की होता था कि जान निकल, जैसे हमारे अब्बा थे, हमारी जान निकलती थी कि फिर हम सुन लें कि अब्बू ऑफिस से निकल गए. तो हमारी ऐसी हालत होती थी यकीन करो कि वो जो अब्बू का एक 40 मिनट्स की ड्यूरेशन होती थी सदर से गुलशन इकबाल आने वाली कराची, तो वो हमें लग रहा होता था कि अब ये 40-41 मिनट में जो हमारा हशर होना है, अब्बू ने नहीं छोड़ना हमें इस हरकत के लिए, इस बात के लिए हमने पढ़ा नहीं, यू व्हाटएवर, जो हमारा ये डर था. पेरेंट्स प्यार भी करते हैं, वही आपको पालते करते हैं, लेकिन ये चीजें खोती थी. हाँ, अब उसमें सब बच्चों को पता है, सब औलाद को पता है कि कैसे लेके चलना है. वो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनकी इतनी मोहब्बतें हैं. अभी पिछले दिनों एक हमारे हमसाय मुल्क का ही एक वो है जिसमें कुछ सिख फैमिली थी, उन दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को घर लेके दिया. आपने देखी वो वीडियो, और वो बहन इतना रो रही थी, वो कितनी मोहब्बत से खड़ी ये देख रही थी कि घर किसको मिलेगा ना, मतलब किसके लिए भाइयों ने बनाया. तो वो अचानक से उसका नाम लिखा. तो कहने का मकसद ये है सारी की सारी जो ना वो तरबियत है कि पेरेंट्स किस तरह अपनी औलाद को पाल रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं. अभी देखें मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों मैंने ऐसे देखा है, 3-4 भाई बहन है, एक दूसरे की जान के दुश्मन. अभी एज क्या है, 32, 33, 34 और शादियां हुई हैं, एक 2-2, 3-3 बच्चे, लेकिन एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए सारे. के मतलब पेरेंट्स की कह रहे हैं वो आए तो मैं नहीं आ रही, मैं आ रही हूं तो वो नहीं आएगा. ये चीजें चल रही है. ये हमारे टाइम पे शायद नहीं था क्योंकि हमारे जो है वो इस तरह की सख्ती थी, जो रिश्तों की अहमियत थी वो बहुत बकायदा से बताई जाती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से लेके चलना है. अब चूंकि बच्चे
1: बड़े हो गए, तालीम याफ्ता हो गए,
0: तालीम का एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो चुका है. आप देखें लोग बच्चों की जिंदगी में केबल ज्यादा आ चुका है,
1: प्राइवेसी का बहुत
0: बहुत ज्यादा
1: पता चल गया. पहले प्राइवेसी क्या होती
0: थी. कल रात को हम एक जगह गए हुए थे, वहां डिस्कशन हो रही थी, तो एक डिस्कशन जो निकली वो ये निकली कि यंगस्टर्स जो हैं वो नॉर्मली अब ये कहते हैं कि शादी नहीं करनी. आप देखें ये एक ठीक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का वो है, शादी खूबसूरत रिश्ता है, एक बहुत प्यारा बंधन है, लेकिन उनकी मेजॉरिटी जो है वो वहां बैठी है कि शादी नहीं करनी. क्यों नहीं करनी, क्योंकि भाई क्यों मैं अपने सर पे बोझ डालूं, क्यों मैं अपनी अपना कमा रही हूं या अपना कमा रहा हूं. जेंजीज तो हम जो है वो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं. हमें नहीं जरूरत कि हम किसी एक का सर पे बोझ लें, किसी के ऑर्डर्स मांगें, किसी की रोटियां पकाऊं, या मैं किसी के लिए कमाने निकलूं बाहर जाके. मैं अपना कमा रहा हूं, अपना खा रहा हूं, ये वो ये चीजें चल रही थी. तो इससे अंदाजा हो रहा था कि हमारा जो मीडिया है उसके थ्रू भी, जो बैरून ममालिक जो चैनल्स हैं बहुत सारे, वो भी इस चीज़ में बड़ा उनका हिस्सा है, उन्होंने डाला. तो ये सारी चीज़ें यंगस्टर्स को, लोगों को बड़ी दूसरी तरफ लेके जाए.
1: अच्छा, इवन आई वुड लाइक टू ऐड इन इट साहिल, क्योंकि हम बात करें फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है, क्योंकि अब दुनिया आपका फॉन्ट जो है वो मिनी ग्लोबल आपके हाथ में है. एग्जैक्टली,
0: सब कुछ देख रहे हैं.
1: यस, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कहां पर. इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमने बात की है कि वाकई जेंजेस और नौजवान जो है उनका रुझान जो है वो शादी पर उस तरह से नहीं आ रहा, या डिवोर्स का जो रेशो है वो, अगर मैं इवन पाकिस्तान में बात करूँ, दुनिया भर में बात नहीं करते, पाकिस्तान में डिवोर्स का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब बात कहाँ पर आती है, आप क्या कहेंगे कि डिवोर्स का रेशो क्यों बढ़ा है? सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से? सो आई विल से नॉट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स अबाउट, इट कुड बी लाइक वन ऑफ द रीजंस अवेयरनेस, लेकिन उसकी एक और बड़ी वजह ये है, देखिए उस वक्त तक घर चलते रहते हैं या चलते रहते थे जब तक खवातीन जो है वो खामोश रहती हैं, चाहे वो माजद के साथ जुल्म सहना हो, बातों को सुनना, बर्दाश्त करना, सहना हो, उस वक्त तक रिश्ते चलते हैं. लेकिन जब औरत ने अपने हक की बात की तो रिश्ते टूटने लगे. तो इसका मतलब है एक्चुअल जो कड़ी पकड़ के रखी हुई थी वो एक औरत ने पकड़ के रखी हुई थी, यानी उसने जब जुल्म सहना छोड़ा, अपने पर ज्यादती होते हुए बात करना शुरू किया, तो आपने कहा ये तो औरत, ये मुझे चाहिए नहीं, मैंने इसके, क्योंकि उसने अपने हक की बात की. तो वो अपना हक खामोशी से किसी को ले जाते देखे तो वो अच्छी है. सो आई थिंक इसमें अवेयरनेस के साथ,
0: बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, भी कुछ दिन पहले का वाकया है, मुझे किसी ने बताया कि जी बड़ी ही अच्छी और पढ़ी लिखी खातून, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ, एक्चुअली में उन्होंने आई थिंक साइकोलॉजी में जो है वो मास्टर्स की, एमएससी होती है इनकी,
1: एमएससी
0: ना वो की हुई थी,
1: और एमएससी मैथ्स कॉम किया.
0: अच्छा, मैथ्स कॉम, मैं भी मैथ्स कॉम एमएससी ही नहीं मैंने, लेकिन मैंने वो साइकोलॉजी वाली नहीं की. तो हुआ ये,
1: मैंने जो एमएससी किया पाकिस्तान में होती भी नहीं है.
0: मैं तो बाहर से पढ़ा,
1: बाहर से. हां, बिल्कुल बिल्कुल,
0: बाहर था मैं.
1: बाहर ही थे एग्जामिनेशन हॉल से,
0: बाहर था ना मैं, मतलब मैं था बाहर, बाहर से किया जो भी किया। अब हुआ ये कि वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी और बड़ी अच्छी, मतलब माशाल्लाह पेरेंट्स उनकी बड़ी अच्छी थी, तो हम बड़े परेशान हुए, हमने कहा जी क्या हो गया, कहते हैं कि जी दो बच्चे इनके और एक सेकेंड उनके, कहते दो बच्चे हैं जी इनके माशाल्लाह और अच्छे खासे, मतलब जो है वो पैसे वाले घर से इनका अपना ताल्लुक था, जहाँ शादी हुई वो भी अच्छे वेल सेटल्ड लोग थे, लेकिन वो बंदा जो है वो उसने ये लव मैरिज की और बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत की शादी इन्होंने की, जबकि ये नहीं मानते थे और इनका अपना भी कोई इंटरेस्ट इतना खास नहीं था बकौल उनके, जो उन्होंने स्टोरी हमें सुनाई। लेकिन कहते कि जब जाहिर है आपको कोई इतनी तवज्जो दे सिर्फ आपके लिए, वो हर चीज़ करे, तो आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू होता है, आपके दिल में उसके लिए मोहब्बतें जागना शुरू हो जाती हैं। कहती बहरहाल जी करते कराते रिश्ता हो गया जी। अब बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद जो है वो जिंदगी चल रही थी और कहती मैं मुसलसल तकलीफों में इसलिए थी कि फैमिली बहुत बड़ी थी और कहती मैं एक टाइम पे मुझे इतना खाना किचन बर्तन यही करना पड़ता था। कहती मुझे मसला नहीं था क्योंकि मुझे ये था कि चले अब बच्चे हो गए तो मैं वही एक जो बकायदा पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज करने वाली लड़कियां मैं उस तरह से गुजार रही थी अपनी जिंदगी। कहती अचानक से फिर एक दिन ऐसा भी आया जिंदगी में कि जब मुझे महसूस हुआ कि भाई मुझे कुछ थोड़ी पॉकेट मनी की जरूरत तो है ना, लड़की हूं मुझे कोई चीज ऐसी चाहिए जो मैं किसी से नहीं मांग सकती,
1: इवन सब जरूरतें भी पूरी हो ना तो आपके पास पैसे होने चाहिए।
0: अब वो कहती मैंने सिर्फ 3000 रुपीस की एक वो रखी थी कि मुझे 3000 रुपए थे, जबकि मेरे मियां की जॉब जो है वो लाखों में 36 फिगर्स में कमाने वाला बंदा था और लैंडलॉर्ड लोग हैं, मतलब सही वाले अच्छे खासे उनके बिजनेस से था। कहते वो 3000 रुपए देने को तैयार नहीं था मुझे, वो नहीं दे रहा था। बहरहाल व्हाटएवर क्या मामला थे क्या, कहती मैं बड़ी परेशान हुई। वो कहते मेरे वालिद साहब ने एक ही बात की कि बेटा जिंदगियां जो ना वो इस तरह नहीं गुजारी जा सकती सारी, और मैं इसमें इतना इस हक में हूँ, अब यकीन करें मैं ये भी बताऊंगा आपको। कहती बहरहाल हो गया, मेरी डिवोर्स हो गई। कहती है मुझे तो 3000 देने से मना कर दिया, आज वो 30000 रुपए बच्चों के भरता है हर महीने। कहती है जो तकलीफ अब उसको होती है, कहती है मैं अब ये हैरान होती हूँ कि तुम 3000 मुझे नहीं दे रहे थे और शादी भी नहीं की, कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह से क्या कहां से करे शादी।
1: लेकिन कुछ लोग 30000 रुपए वहां भरे आप साहिल, देखिए डिजर्व इन द सेंस कि जब आप देखिए, मैंने एक चीज जो अपने वालदैन से सीखी है ना, मेरी माँ कान की कभी कच्ची रही ना मेरे वालिद साहब, होता है ना रिलेटिव्स में मेरा ददेहाल है, मेरी अपनी अम्मी का ननिहाल है, मेरे अपने पेरेंट्स के लव मैरिज है, कान की कच्ची वो किसी रिश्ते में भी नहीं है। ऐसा होना कि मैंने अपनी अब्बू को अपनी बहन की शिकायत लगा दी तो होता ना, ये मेरी बहन ने अब्बा को मेरी शिकायत लगा दी तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये वो भाई बिठा लेते थे जिरगा सामने बैठे ना दोनों बहनें, आप मसला बताए
0: सही
1: पता चल जाता था कौन से। तो ये जो माजरत के साथ हमारे यहाँ पर कुछ मर्द हजार भी जो हैं वो अम्मा के सुन ली, बहन के सुन ली या फलाने की सुन ली, देखें आप देखें ना, अल्लाह ने भी जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये बहुत ही खूबसूरत पाकीज़ा रिश्ता है, निकाह का जो बंधन है ये कितना खूबसूरत रिश्ता है। सो आप इस चीज़ को ऑन करें, आप समझें कि वो आपकी बीवी है और वो बीवी का भी उतना ही फ़र्ज बनता है कि वो अपने शौहर की इज्जत करे, उसको सुने और उसको समझे। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, जब निकाह होता है किसी भी मज़हब में, दुनिया के किसी भी कोने में, आप अंग्रेज़ी में जब निकाह होता है ना जिसे हम वाइट वेडिंग सेरेमनीज कहते हैं, उसमें भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट कहा जाता है। उसकी ट्रांसलेशन आप उर्दू में करें तो हमारे यहाँ जब निकाह होता है कबूल, कबूल का मतलब क्या होता है साहिल, कबूल का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इंसान अच्छा है बुरा है आपने उसको
0: तमाम खूबियां कमियों के साथ उसे आपने
1: आपने कबूल किया, एक्सेप्ट किया।
0: एग्जैक्टली
1: जब हम एक रिश्ते में बन जाते हैं फिर हमारा काम शुरू। मैंने देखा शादी के अगले दिन ही ये लिपस्टिक क्यों लगाई है, हाँ। अच्छी नहीं लग रही, ये बाल लंबे कर लो।
0: असल में ना मैंने देखे टॉक्सिक मर्दों के अंदर मामलात हैं भाई, देखे हैं। मैं ये समझता हूँ ना माँ का कसूर, ना नंद का कसूर, ना बीवी का कसूर, मर्द ही असल जिम्मेदार है हर चीज का। क्यों भाई, आपको बैलेंस रखना ही नहीं आ
1: रहा, बैलेंस ही नहीं रखना आता तो
0: आपको रखना ही नहीं आ रहा, आप तैयार ही नहीं थे।
1: बिल्कुल लड़कियां मामाज़ बॉय को,
0: और मैंने इतनी अच्छी अच्छी सास भी देखी है, मैंने इतनी प्यारी प्यारी सास देखी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने देखा है कि बाकायदा तौर पर ऐसी भी सास देखी है जिन्होंने अपने बेटों को बीवियों के सामने थप्पड़ मारे हैं।
1: लेकिन तुमने अब थोड़ा सा पीछे मैंने पीछे कहीं नहीं देखा है ना,
0: पीछे नहीं था अब देखिए,
1: बट यू आर एग्री, आई एग्री विद यू,
0: ये चीजें अब हो रही हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर लड़का खुद स्टैंड ले, चीज़ों को सही करे. मेरी जब शादी हुई थी ना, तो जाने मेरी अम्मी नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे, मैं अकेला था बिल्कुल. तो अब मुझे डर ये था कि बहन भी है, भाई भी है, और मेरी बेगम जरा थोड़ा मुझे ये था कि छोटी भी है, तो मुझे कोई ऐसी बात ना हो जाए कुछ जिसमें मेरे बहनों ही को कुछ बुरा लगे या कोई बात. तो मैं एक ही बात इसे कहता, मैं कहता कुछ भी कोई कहे ना आपने मुझे बताना है, कुछ भी कोई कह दे, कोई चलाकी भी करेगा ना आपने मुझे बताना. मैं उसको ऐसे प्यार से लेता था कि हाँ भाई ये तो मेरा ही है, वो उस तरह. लेकिन और वहां मैं ये कहता था बहन को सबको कि भाई छोटी है ना, कोई बात अगर कह दे कुछ तो यार दरगुजर करना, मुझे बताना, मैं प्यार से समझा दूंगा. आप बोलोगे ना शायद उसको फील हो जाएगा, और फील होगा वो उसके अंदर नंद भाभी वाली बात ना आ जाए, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत करती है आपसे. तो वो सारे मामलात हमारे ठीक चलते रहे, और आज तक यही है. मेरे घर वालों को मुझसे 100 तकलीफ है, वो कहते हैं इसकी बीवी बड़ी अच्छी है. ये रीजंस हैं ये कि आपको खुद सेटल डाउन करनी पड़ती हैं चीजें.
1: आई अप्रिशिएट, और यही हम बात कर रहे हैं कि हर एक ही ट्रैक पे नहीं चलना. अब जैसे साहिल एक ट्रैक, मतलब एक बात आपने बताई, एक तरह का मर्द है, उसने दोनों तरह से बैलेंस कैसे रखा, वेरी गुड एंड शाबाश के लायक है. अब एक और ही तरीके से आपने कहा रिश्ते को, जैसे इसके बिल्कुल उलट मैं बात करने जा रही हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट. मेरे भिनोई हैं, जो मेरे सगे खाला का बेटा भी है मेरा भिनोई. सो मतलब मेरी बहन की जो सास है वो मेरी उसकी सगी खाला भी है और उसकी सास भी. प्रॉब्लम नहीं है. मैं वैसे एक बात बताऊँ, मेरी खाला इतनी अच्छी हैं, मतलब लिटरली हमें वो ऐसा लगता है, एक तो वो मेरी अम्मा से शक्ल उनकी इतनी मिलती है, और दूसरा वो हमसे प्यार भी इतना करती है, और हम भी उनसे इतना प्यार करते हैं जैसे हम अपनी अम्मी से करते हैं. लेकिन जो उनके जेठ है ना, मेरी सिस्टर के, जो मेरा कज़न है, उसकी जो वाइफ है कभी, हालांकि वो बन्नू में रहते हैं, मेरी सिस्टर यहाँ रहती हैं, अब वो कभी ऐसा कोई हो जाता है कुछ ना कुछ करना, और मैं हमेशा नहीं कि वो मेरी बहन है, मैं ऑन एयर कहती हूँ आई एम वेरी क्लेवर, मैं बड़ी चलाक हूँ, और मेरी बहन उतनी ही मासूम और भोली है. अगर उसको कोई ज्यादती कर जाए उसको, तो वो कहती कोई बात नहीं, अल्लाह खुद पूछेगा. मेरे कहती बेटे अल्लाह मियाँ नीचे नहीं आएगा, थोड़ी सी एफर्ट तो आपने खुद भी करनी है ना, मतलब अल्लाह मियाँ ने अक्ल और दिमाग आपको इसीलिए दिया
0: है, उसका इस्तेमाल करना है.
1: एक मेरी बहनोई की बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं आपको अम्मी से मसला है, यानी उनकी अम्मी से मसला है, मेरी भाभी से मसला है, मेरे भाई से मसला है, बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं वो मेरे भी रिश्ते, उनका ननिहाल है कि बंद. कहता आपको जिससे प्रॉब्लम है आपने मुझे नहीं बताना, गो टॉक टू देम. आप मुँह मारी करें, आप उनसे लड़कर आ जाएं, आप मुझे पता है कि आप गलत नहीं करेंगी, मैं आपको जानता हूँ ना, और मुझे इतना पता है कि आगे से वो भी कोई बात करेंगे तो कैसे, मुझे दरमियान में नहीं घसीटना. क्योंकि शुरू में होता था ना, नीतू कहती थी देखो नहीं ये देखो मतलब जेठ ने ना ऐसे कहा, उसकी बीवी ने देखो ये ज्यादती,
0: दोनों रिश्तों में फंस भी जाता है ना बंदा.
1: उसने कहा यार एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरा भाई है और भाभी है, भाभी कर सकती है. उसने हैंड्स अप की, हैंड्स अप इन सेंस लाइक आपका मामला है, बैठ के हल करो, लड़ के हल करो, मैं दरमियान में नहीं, एंड आई ट्रस्ट यू, यू आर एन एजुकेटेड वुमेन, हमारी एक बेटी है, और मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपसे पसंद की शादी की, तो मुझे आपकी अच्छाइयाँ और खामियाँ पता है, तो मुझे इतना पता है कि आप वो फैमिली पॉलिटिक्स वाली लड़की नहीं है, तो रहते इतने डिस्टेंस पे. फिर मुझे अक्सर आता है वो, मुझे उसने मेरा भिनोई कह रहा है यार इसको समझाया करो, मेरे कान ना खाया करे, इसको जिससे कोई प्रॉब्लम है ना
0: जाके खुद
1: बात कर ले. इवन मैं और मेरा भिनोई, हम लोग एक महीना पहले साहिल ऐसे लड़े हैं दोनों, हम इतने सालों में कजन होते हुए नहीं लड़े थे, और फिर भनोई हो गया तो मैंने बिल्कुल ही लड़ना छोड़ दिया. हम बैठ के
0: लड़ाका तो आप बहुत है, लड़ाई तो आप बहुत करते हैं.
1: अल्लाह मेरी अम्मी बैठी हुई है, मेरी बहन बैठी हुई है, अब एक तरफ उसको नजर आ रहा है मेरी बहन, एक तरफ कह रही है मेरे शौहर को, कह रही है मेरा जवाई है मेरे बैठे हुए. सात एक मिनट, आठ मिनट हमारी तो
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.

0: बहुत शुक्रिया, ये बच्चा भागता हुआ है तो मुझे नजर आया कि न्यूज आ गई है। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट न्यूज ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
1: दिस इज 101% प्योर, यू आर ट्यून्ड इनटू द वन अबव 101।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने रावलपिंडी में मुश्तरका तौर पर स्काई 47 कराक्रम 01 डेटा सेंटर का इफ्तिताह किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। डूबने से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन खिलाड़ियों की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच हम्बनटोटा में जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने चोलियानाता में बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीरे ख़ारिजा से मुलाकातों के दौरान इलाकाई और आलमी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआविनत से पाकिस्तान का सनअती शोबा तरक्की की जानिब गामज़न है। डूबने से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3-1 रोजा मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच हम्बनटोटा में जारी है।

0: Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने चोलियोनाता में बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातों के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कैबिनेट से पाकिस्तान का सनअती शोबा तरक्की की जानिब गामजन है। भारतीय फोर्सेस ने काकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच हम्बनटोटा में जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101. Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

मुझे भूल न जाना, मुझे याद न आना, मुझे

Big radio, big style. Please, FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please, please.
0: FM 101.
2: Thank you.

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

Big radio, big style. Please, FM 101.

Big radio, big style. Please, FM 101.

Big radio, big style. Please, FM 101.

Big Radio, Big Style. Please, FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please, please.
0: FM 101.
2: Lay, lay, lay, lay, lay, lay.

Big Radio, Big Style. Please, FM 101.

0: Big radio, big style. Music.
1: Please,
0: FM 101.

Big radio, big style. Please, FM 101.

तुझे सजना दिया, दिल करे फरियाद नहीं चिड़ा तेरे बाद।

0: 101. Big FM.
1: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
2: शाम के 7 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने चोलपुनाता में बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों के दौरान इलाकाई और आलमी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर सेहत ने मुल्क में इलाज मुआलजे के बुनियादी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम का नोटिस ले और तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल में मदद दे। आज हम्बनतोता में पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों के सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया।
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
0: 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
0: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
0: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

My dear cool lovely and smartest money listeners, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum from 101 and bonjour. आपके दिल पसंद रेडियो स्टेशन FM 101 से आपका अपना मसूद अहमद आपके साथ। वज़रब आज हो गई है अगस्त की 25 तारीख, सॉरी जुलाई की 25 तारीख, सन है 2026, वक्त हुआ चाहता है जी 10:13। आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजियाँ, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक बदलती तारीख तक। अगर आप हमारे पास आना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं, इस तरह के आप हमें आज हमारा नंबर डायल नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुछ टेलीफोन लाइंस में प्रॉब्लम है और शायद बारिश ज़्यादा होने का सबूत है ये। फेसबुक पर हमारा पेज है FM 101 लाहौर, उस पर आप कमेंट करके हमारे साथ, हमारी पोस्ट पर कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 4471 एज यूजुअल हमारा नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, वहाँ लिखना है आपने 101L। अब सुना है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 101 लिखना है, खाली जगह देनी है और उसके बाद अपना नाम लिखना है खूबसूरत सा, और उसके बाद एक खाली जगह देकर अपना खूबसूरत सा पैगाम लिखना है और उसको सेंड कर देना है 4471 पर। बिल्जी हाल अहवाल और सब कुछ जो है ये चलता रहेगा, साथ साथ इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे ये वाला गाना, इसके बाद प्रोग्राम को हम मज़ीद इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे साथ साथ। और ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती बाकी रहे,

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह,
1: लाइक इट?
2: या इट्स नाइस।
0: भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
2: ये रहा डिजाइन।

वेलकम वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की और मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक। वेलकम कहिए कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी बात है अल्लाह ताला का शुक्र और आपकी दुआएं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। वल जी आज मुलाकात हो रही है आपसे काफ़ी अरसे के बाद और काफ़ी लंबा गैप इसमें आ गया, बहुत सारे वाक़ात इसमें ज़िंदगी में शामिल रहे, ज़िंदगी ट्विस्ट एंड टर्न्स में से होती हुई टॉस एंड ट्विस्ट करती हुई जो है वो आज दोबारा उसी मोड़ पे खड़ी है। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं शायद यही लाइफ होते हैं, यही ज़िंदगी होती है और अगर ये सब ना हो तो शायद ज़िंदगी भी ना हो। एनीवेज अगर आप इस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए और वो तमाम लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन सब के लिए भी आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। और वैसे भी आजकल लाहौर की जो सड़कें हैं वो गीली हुई हुई हैं बारिश से, और बारिश जो है वो भी कैसे कह लें कि महबूब के मिजाज की तरह हुई हुई है, और कभी एकदम बरस पड़ती है और कभी धूप निकल आती है और कभी हब्स हो जाता है, कभी खुशगवार हवाएं चलती हैं। एनीवेज इस मौसम में जो है जहां इसकी खूबसूरती और दिलकशी अपनी जगह है, जो सब्ज़ा हमें देखने को मिलता है और जो सब्ज़े का जो रंग और सब्ज़े पे जो खूबसूरती आती है जहां वो दिल को भाती है, वहीं पर बहुत सारी कुछ ऐसी ख़बरें भी सुनने को मिलती हैं कि जिनसे दिल जो है वो बड़ा उदास सा हो जाता है। तो इसलिए इस मौसम में एहतियात बहुत ज़्यादा करें और दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में कह लें कि हमारे भी कुछ इतना कि कह लें जो सूरत हाल है हमारी लाइट के हवाले से क्या कह लें बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से होता है कि हम चीज़ों को टिल द एंड जो है वो उनको रिपेयर या मेंटेन करवाने पर हम ध्यान नहीं देते जब तक कि बिल्कुल ही चीज़ें जवाब जो है वो नहीं दे जाती। तो इस वजह से बहुत सारे हादसात ऐसे मौसम में हो जाते हैं जिसमें बहुत सारी खबरें हैं जो आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, उन सब का जिक्र करना तो ज़रूरी मेरा ख्याल है कि नहीं है, लेकिन बस एहतियात है, ख़ुद भी एहतियात करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें, क्योंकि इस तरह हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो कि हम कभी सुनना नहीं चाहते, कभी उनको देखना नहीं चाहते, और अगर एहतियात थोड़ी सी करें हम तो शायद हम इन चीज़ों से जो है वो ख़ुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। एनीवेज खाने शाने का क्या प्रोग्राम है, खाना शाना आपने खा लिया है या अभी नहीं खाया, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि आज आपकी लाइव कॉल तो शायद हम प्रोग्राम में शामिल ना कर सकें, लेकिन 4471 पे आपके मैसेज और हमारी जो पोस्ट है FM 101 के पेज पर, उस पर आप हमें कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसको भी हमें चेक करते हैं कि इसको तो हमने रुकने को नहीं कहा तो फिर ये क्यों रुक गया। तो जनाब इस खूबसूरत से मौसम में कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम को भी खूबसूरत बनाएं। समटाइम ऐसा होता है कि जो काम हम चुटकी बजाते कर लेते हैं उन्हीं कामों को करने के लिए हमें घंटों नहीं दिनों नहीं महीनों सोचना पड़ता है कि आया अब भी हम कर पाएंगे। मेरी जाने अदा है ये, उसकी वजह क्या होती है, मेरी आशिकी में हूं फना, वजह सिर्फ ये होती है कि हमारी सोच का महवर चेंज हो जाता है। कुछ नजर के आगे नए पर्दे आ जाते हैं और कुछ पर्दे उठ जाते हैं।

वेलकम वेलकम बैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं आप मसूद अहमद की मेरा आपका साथ है ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक इन द शो दैट इज़ कॉल्ड शब खेजियां। तो अगर आप भी शब में खेजियां चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है एफएम 101 लाहौर का, उस पर आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 4471 पर मैसेज करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। वेल जी, आज के प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से आपको बताते चलें कि टॉपिक हमारा आज का क्या होगा। टॉपिक हमारा आज का ये होगा कि जी आपको अपने वालिदैन की कोई ऐसी नसीहत जो आज तक याद है या जिसको आप अक्सर याद करते हों और याद करके उसके साथ साथ आप ज़िंदगी के जो भी अपने मामलात हैं उनको लेकर चलते हों, तो कोई ऐसी नसीहत जो आपके दिल में बैठी हुई है, कोई ऐसी बात उनकी जो आपके दिल में बैठी हुई है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। या कौन सी एक ऐसी बात है जो अक्सर वो आपसे कहते हैं या कहते थे, वो आप हमारी पोस्ट पर कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होकर डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान की ये नेचर है शायद कि जब भी उसके पास कोई चीज़ उसके हाथ में होती है ना, तब तक उसको शायद उसका एहसास नहीं होता, जब तक कि वो उसके हाथ से चली नहीं जाती, जब तक वो उसके हाथ से स्लिप नहीं हो जाती, हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। और उस वक्त तो हम उसको शायद बड़ा बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, या शायद कुछ कह लें कि अगर बेवकूत बाज़ का नहीं समझते तो बाज़ात ऐसा होता है कि हम उसको एक तरह से गुबर्डन समझ लेते हैं, या शायद अपनी कमकली समझते हैं, या अपनी कमकली का मुजाहरा करते हुए हम उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ हमारे हाथ से चली ना जाए। जिसमें सबसे पहले अगर मैं ज़िक्र करूँ तो शायद हमारी ख़ुद की सेहत होती है, जिसका हम ख्याल उस वक्त तक नहीं रखते जब तक कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। और जब एक दफ़ा मामला ही सीरियस हो जाता है तो फिर उसके बाद और

बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन है वो साथ साथ चलती हैं, इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला की इस नेमत को जो फ़िलहाल जब तक तो ये कह लें कि हमारे पास अपनी सही सालम हालत में मौजूद है तब तक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सिर्फ उसकी कॉस्ट ये है कि हमने उसको मेंटेन रखना है, हमने उस नेमत का जो है वो ख्याल रखना है, और जो हमें तरीक़ेकार बताए गए हैं ये जो तरीक़ेकार उसके लिए मौजूद हैं उसको हमें रहते हुए जो है उस पर अमल करते हुए अपने अपनी जो लाइफ है या अपने जो उसके एसओपीज़ हैं उनको उसको मेंटेन रखने के उन्हें हमें लेकर चलना है।

और इसके साथ साथ जनाब, जैसे मैंने बात की पहले कि जनाब खाने शाने के हवाले से क्या प्रोग्राम है, आपने खाना खा लिया है अभी या खाना नहीं खाया, और खाने के लिए क्या प्लान है आपका? क्योंकि मौसम में मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ऐसा प्लान कर रहे थे कि आज बारबेक्यू का जो है वो कुछ सीन बनाया जाए, तो ऐसा क्या है, आपने कुछ स्पेशल किया आज नहीं किया, या ऐसे नॉर्मल रूटीन से आप भी तंग हैं और मौसम की जो क्या कह लें कि जो नोयत है उसके हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ इस मौसम में कहते हैं जी करने को दिल नहीं करता, कि अजीब सा जो है वो चिपचिपा सा मौसम हो जाता है और इसमें जो है वो कुछ करने को दिल नहीं करता और कुछ करने को मन नहीं करता, तो आपकी क्या सूरत हाल है, आप ये भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक है उस पर भी बात कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बताते चलें कि जनाब साथ साथ जो हमारी जो नेक्स्ट में एक्चुअली मैं जो सॉन्ग प्ले करना चाह रहा हूँ ना वो सॉन्ग मेरे सामने आ नहीं रहा, लेकिन हियर इट कम्स।

वेल जी 10:00 हो चुके हैं 35 मिनट। आप जनाब इस वक्त अपने काम काज से वापस आ चुके हैं, अपने घर में आप आ चुके हैं या अभी अपनी शॉप पे हैं, अपने काम पे हैं, अपनी वर्कशॉप में हैं, कहीं पे भी हैं आप अगर, तो जनाब उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेकिन कारोबारी हिसाब से आज भी मुझे कह लें कि बस एक कारोबारी जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो कारोबारी मामला जो है वो तो इन दिनों में इन हालात में मौसमी हालात में थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो जितने भी कारोबारी हजरात होते हैं उन सबके चेहरे पर जो है वो एक उदासी से नज़र आती है कि यार ये बस मौसम की वजह से जो है ना काम आज जो है ना कुछ इतना सही नहीं था। एनीवेज ये सब कुछ तो चलता है, ये सब मामला तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं। जिस दिन हम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हमें एक दिन की जगह दो दिन की भी जब कमाई दे देते हैं तो उस दिन भी तो हम घर वापस लौटते हैं और उस दिन भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो ऐसे में भी जब थोड़ा सा जिस दिन मामला ऐसे हो जाएँ तो तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें कह लें कि कुछ ऐसा नहीं किया कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, हमें किसी की मोहताजी जो है वो लेनी पड़े। और इस दुनिया में मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की जो मोहताजी है ना, चाहे वो माल पैसे के हवाले से हो, चाहे वो जिस्मानी हिसाब से हो या माली हिसाब से हो, किसी भी तरह से हो, वो बहुत तकलीफ दे अमल होता है। तो इसलिए अगर आज का दिन कुछ कह लें कि उतना कुछ मुनाफा जितना हम सोच रहे थे, जितना समझ रहे थे उतना हमें नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो उसको आने वाले दिनों में पूरा कर देंगे, बल्कि उससे बेहतर कर देंगे जब हम अल्लाह ताला पे तवक्कल करेंगे। तो एनीवेज आपके मैसेज हैं जो मैं ऑन एयर करना चाहूँगा। फेसबुक पर हमारे मैसेज, आपके कुछ ऐसे मैसेज हैं जो कि हर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और एक लगता है कि वो बस ऐसे मैसेज हैं कि जो हर दफ़ा प्रोग्राम में, हर किसी के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आप अगर ऐसे खुश हैं तो हम भी ऐसे खुश हैं। हमें जनाब किंग फजल साहब ने मैसेज किया है और वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। और बरकत रमज़ानी साहब ने मैसेज किया है, जमाली बलोच साहब, अब आई डोंट नो ये जगह का नाम है या इनका पूरा नाम है ये, और कह रहे हैं कि जी मैं बरकत जमाली बलोच जाफराबाद बलोचिस्तान से लें। सर बहुत शुक्रिया और हम दुआ करेंगे कि आजकल जो हालात हमें बलोचिस्तान के हवाले से सुनने को मिल रहे हैं, अल्लाह ताला फजल करें, अपना करम करें और हमारे दिल में भी रहम डालें, और जो दूसरे लोग जो कह लें कि जो शर पसंद हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत वाला रास्ता दिखाएँ। और कह रहे हैं कि जी और क्या कह रहे हैं कि जी ओके ठीक है। और इसके अलावा अलहमदिल्ला माला खेल साहब ने मैसेज किया है और कह रहे हैं कि जी इज़्ज़त सिर्फ इन्हीं को मिलती है जिन्होंने हक का साथ दिया। बिल्कुल जनाब, इज़्ज़त हमेशा उन्हीं को मिलती है जिन्होंने हक का साथ दिया, लेकिन हक का साथ देने के लिए बहुत हौसला चाहिए, बहुत जिगर चाहिए होता है, बहुत बड़ा एक दिल और गुर्दा जो है वो चाहिए होता है इसके लिए। एनीवेज अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दें। और इसके अलावा नज़ीर खोसो साहब ने सोबतपुर बलोचिस्तान से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। मलिक वसीम अवान ने मैसेज किया, बहुत उम्दा प्रोग्राम, थैंक यू। और रज़ा चौधरी साहब ने मैसेज किया, रज़ा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप शामिल हुए। और बिनते सिद्दीक ने हमें मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आरजे मसूद अहमद, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखें जी। और रज़ा चौधरी साहब ने हमें बहुत सारे लोगों को मैसेज किया है, शमसी रेडियो लिसनर क्लब की जानेब से को और शमसी साहब को, रज़ा चौधरी, एहसन खान, सहूवी, रहम एजाज, जितने भी लोग आपने कहे हैं जिनके मैं नाम ले सका उनका भी और जिनके नहीं भी ले सका उन सबको भी हमारी तरफ से, आपकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा जी किसने हमें मैसेज किया है, मोहम्मद हफीज़ुर रहमान साहब ने भक्कर से मैसेज किया है, थैंक यू। और इसके अलावा जी रेहान ख़ान ने भक्कर साहब से मैसेज किया है, थैंक यू। और आशिक खशक खेली ने मैसेज किया, जी अस्सलाम वालेकुम मेज़बान, बहुत शुक्रिया। और आगे जो आपने शायद लिखा है ये सिंधी है, और मेरे भाई सिंधी तो मुझे पढ़नी तो खैर बड़ी मुश्किल सी आती है, मिलती जुलती उर्दू सी लग रही है, लेकिन जो इसका तलफ़ुज़ है यकीनन वो सिंधी वाला होगा, वो मैं अदा नहीं कर सकूँगा। और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल हुए। और फिर रज़ा चौधरी साहब ने मैसेज किया, बहुत सब लोगों को आपने सलाम कहा और जो लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं उनको भी सलाम कहा, बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम सलाम देने वालों का भी शुक्रिया, लेने वालों का भी शुक्रिया। परवीन शाकिर का आपने, बिनते सिद्दीक ने हमें एक मैसेज किया है, जी ओए होए होए, एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। ओए होए होए, साहिल से जनाब बहुत सारी शायरी मंसूब होती है, और बस मैं कहा करता हूँ ना कि मैं बेअदब सा इंसान हूँ, मैं इतनी अदब वाली बातें जो हैं वो मैं अच्छी नहीं कर पाता, तो इसलिए आप शायरी वाली बातें जो है ना वो आप
वो आप खुद से कर लिया करें, मुझे लगता है कि आप मेरे से अच्छी शायरी कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जी और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, उनको हम वक्तन फ़क्तन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। टॉपिक के हवाले से तो फिर से आपको बताता चलूँ कि आपको अपने पेरेंट्स की कौन सी कोई ऐसी बात, कोई नसीहत, कोई एडवाइस जो आपको अभी तक याद है, या आप उसको अक्सर याद करते हों और उसको याद करके जो है वो आप अक्सर उन्हें भी याद करते हों और कहते हों कि हाँ ये उन्होंने ये बात कही थी और बिल्कुल सही ये बात थी। अब ज़िंदगी के तजुर्बात में जब मैं ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी का जो प्रैक्टिकल फेज़ है जब उसमें मैं दाखिल हुआ हूँ तो ये बात बिल्कुल सही लगती है और शायद उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई थी और लेकिन अब जो है वो मुझे बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आने शुरू हुई है। तो ऐसी कौन सी बात है आपके जहन में, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे नैन बड़े कचरारे, आई डोंट नो कि इसको ब्रेक क्यों लग जाती है, मैंने पहले भी इसको प्ले किया था लेकिन रुक रुक के चल रहा था, लगता है कुछ इंटरनेट जो है ना उसको भी बारिश का कोई असर हुआ है आज।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं मसूद अहमद की। मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक इन द शो दैट इज कॉल्ड शॉप खेजियां। और बात हम करें इस हवाले से कि जी वालदैन की कौन सी ऐसी नसीहत है जो आपको अभी तक याद है या जिसको आप अक्सर याद करते हैं और याद करके आप ये कहते हैं कि हाँ अब्बा जी ने जो कहा था ठीक कहा था, अम्मा जी ने जो कहा था ठीक कहा था। मेरे भी दिल में बहुत सारी ऐसी हैं लेकिन अब मैं उन्हें कंपाइल करना शुरू कर रहा हूँ ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कंपाइल कहाँ से करना शुरू करूँ। मुझे तो लगता है कि अब शायद ना उम्र के इस फेज़ में हूँ कि जहाँ पे मैं ये भी देख रही जो मैंने गुजारी ज़िंदगी वो भी मैं देख रहा हूँ, वो भी मैं जहन में आती है और अब जो साथ चल रही है वो भी मेरे जहन में आती है। तो मुझे समटाइम ये लगता है कि मेरे बच्चों में और हमारे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि आई डोंट नो कि बचपन सभी का ऐसा ही होता है क्या, सभी बचपन में इतने ही नासमझ होते हैं जितने हम थे या जितने हमारे बच्चे हैं, ऐसा होता है या क्या होता है? ये जो एक क्या कह रहे हैं ये सवाल है ना मेरे ये दिल में अभी चल रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा मैं इस पर सोचता तो नहीं हूँ लेकिन खैर ये कि बहुत ज़्यादा जहन में आता है कि क्या ये सभी के साथ होता है या सिर्फ हमारे साथ होता है। हमें भी ये लगता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बस आसमान से कहीं कहीं ख़जाना पड़ा हुआ है वहाँ से वो ख़जाना लेके आते हैं, पैसे लाते हैं जिससे हमारे सारे खर्चे जो हैं वो पूरे होते हैं। और शायद मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी यही फील होता है और शायद ऐसे लगता है कि माँ बाप के पास तो जब भी कोई चीज़ लेकर जाओ, जब भी कोई बात लेकर जाओ, उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, उनके पास हर चीज़ का हल होता है। आई डोंट नो ये हर बच्चे की मैंटेलिटी यही होती है या सिर्फ हमारी मैंटेलिटी होती है, होती थी और होती है। क्योंकि जब इंसान पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जब कंपेयर करना शुरू करता है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो उसके जहन में जो हैं वो सवालात वो जन्म लेते हैं जिसका उनके पास उसके पास शायद उस वक्त आंसर नहीं होता, ये शायद आंसर उसके पास वो देने वाले वो लोग नहीं होते तब तक कि जब तक जो उनसे एक स्टेप या दो तीन स्टेप जो आगे जा चुके होते हैं और उनके पास उसका जवाब आ चुका होता है। लेकिन तब तक ये होता है कि हमारे पास जवाब लेने के लिए और शायद उनके पास जवाब देने के लिए टाइम नहीं बचता, वो पर्दा जो है वो डल जाता है और आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की जो पहेलियां हैं उनको सुधारने में लगे रहते हैं और जो जो ज़िंदगी की जो पहेलियां जो गुजार चुके होते हैं, जो आगे जा चुके होते हैं, कुछ वो बातें आपको समझा जाते हैं कि बेटा ऐसे कर लेना और ऐसे ना करना, कुछ बातें जो हैं वो अनकही रह जाती हैं, वो फिर आपको ख़ुद से सुलझानी होती है। तो आपके जहन में आपके दिल में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप लेकर चल रहे हैं जो आपके जहन में अक्सर चलती हैं, आपको अक्सर जो हैं वो उकसाती हैं और उचकाती हैं? डबल 4 7 1 पर आप हमारे साथ मैसेज करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारी जो पोस्ट एफ एम 101 लाहौर की उस पर आप कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। किसी की सादगी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।

क्योंकि जो सादा लोग होते हैं ना, उनकी पहुंच बड़ी दूर तक होती है। तो कभी किसी को सादा समझ के, सादा देख कर फकीर भी नहीं समझना चाहिए।

वेल जी, कहते हैं कि इंसान को इतना भी सादा नहीं होना चाहिए कि जो भी आए और उसको धोखा देकर चला जाए, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग जेन्युइनली सादे होते हैं ना, वो वाकई ही सादे होते हैं, और उनका सादे होने में या उनका सादे रहने में अपना कोई इख्तियार नहीं होता। बाय नेचर ही शायद ऐसे होते हैं कि वो कुछ चाह कर भी जो है ना, कुछ इतनी चालाकी और इतनी तेज़ी जो है वो नहीं कर सकते जितनी दुनिया में, कह लें कि दुनिया में रहने के लिए कहते हैं कि इंसान को चार कान होने चाहिए उसके, और उसकी चार आँखें होनी चाहिए अगर तो वो दुनिया के साथ चलना चाहता है तो। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग कह लें कि जो नेचुरली, जो कुदरती तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लोग सीधे होते हैं, सादा लो होते हैं ना, उनको आप जैसे मर्जी कर लें, आप उनको समझा लें, आप उनको कुछ भी कर लें, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो अपनी नेचर को चेंज नहीं कर पाते। एनीवेज जी, बहुत सारे लोगों के साथ जो हमारे साथ जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अली रज़ा। अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा प्रोग्राम सुने। अली भाई जना बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दें, सेहत दें, तंदरुस्ती दें, और हर मौके पर हर काम में जो है आगे बढ़ चढ़ कर ये शामिल होते हैं। तो अली भाई, प्रोग्राम के हवाले से जो बात होगी वो इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम के बाद होगी, ठीक है? आपको कहाँ लगता है कि हम कहाँ कमी कोताही करते हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? एनीवेज जी, जो हमारे सामने नई घड़ी लगी है ना, आज मैंने तो आज ही नई देखी है, और वो बता रही है कि अब जो है हमारे पास न्यूज़ ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, और साथ साथ अदील जो है वो भी आके बैठ गए हमारे साथ। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो आने वाला है, या कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उससे पहले वो आके हमें इंटीमेट कर देते हैं। एनीवेज जी, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के बगैर ही, बहुत एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के बगैर जो है वो अच्छा प्रोग्राम नहीं हो सकता, और अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए आपको सभी लोगों को जगह जो है वो देनी चाहिए, सभी लोगों की जो ड्यूटी है उसका ख्याल करना चाहिए कि वो भी ड्यूटी करने के लिए आए हैं, और उनकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनीवेज जी, वीकेंड के हवाले से खाने की भी हम बात कर रहे थे कि खाने छाने का आपने कोई प्लान बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन खाने के हवाले से कोई प्रोग्राम में कोई मैसेज जो है वो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। आई डोंट नो लॉरियन क्यों है, लॉरी आजकल खा पी नहीं रहे, खाबें शाबियाँ का सीजन तो वैसे है तो सही है, वैसे तो जिन्होंने खाना होंगे वो खा ही लेंगे ने, लेकिन फिर भी कोई उस हवाले नाल कोई खास गलबात जी को सामने नहीं आ रही है जे। एनीवेज जी, वक्त है न्यूज़ ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ हम शामिल होंगे और आप हमारे साथ शामिल होंगे, हम तो यहीं रहेंगे। बात हम करें जनाब वालदैन की नसीहत के हवाले से कि आपको अपने वालदैन की कोई ऐसी बात याद है या जिसको आप अक्सर याद करते हैं, याद रखते हैं। इग्नोर तो हम बहुत सारी बातों को करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इंसान को लग पता नहीं जाता ना, तब तक वो अपने वालदैन की, अपने बड़ों की बातों को इग्नोर ही कर रहा होता है, और जब लग पता जाता है उसके बाद फिर उसके लिए वही बातें जो हैं वो ख़जाना बन जाती हैं और वही उसका असासा रह जाती हैं। एनीवेज जी, बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब, और उसके बाद फिर से आपके साथ होते हैं, तो स्टे अराउंड 2-1-1।

वेल जी लिसन, वेलकम बैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की, और मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक। वेल जी, हम जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हम जब भी मिलते हैं बहुत बेसाख्ता मिलते हैं, और बहुत अरसे के बाद भी मुलाकात होती है तो लेकिन ऐसा लगता है कि मुलाकात शायद इतनी पुरानी नहीं है जितना टाइम गुजर चुका है, लगता नहीं है कि इतना टाइम गुजर चुका है। और अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत हमारे बड़े भाई, हमारे प्रोड्यूसर भी रहे ज़ीशान साहब, उनसे बात हो रही थी और साथ अदील साहब से बात हो रही थी कि वक्त जो है वो इतनी तेज़ी से गुजरता है कि जो कह लें कि जो साल हैं वो महीने लगते हैं, जो महीने हैं वो दिन लगते हैं, और जो दिन हैं वो घंटों में तब्दील हो जाते हैं, और जब कभी हम उन्हें गिनने बैठते हैं तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि जनाब इतना टाइम गुजर गया है इनसे मिले हुए, इतना टाइम हो गया है इन्हें देखे हुए। और साथ ही जनाब कुछ जो रस्मी जुमले होते हैं वो फिर कह लें कि उनकी आमद होती है कि कहा जाता है अच्छा इतना अरसा आप कहाँ थे, इतना अरसा आपको देखा नहीं, आपकी नज़र नहीं आए, हालांकि हम यहीं होते हैं। बस ये होता है कि अपनी अपनी मसरूफियात में लोग मसरूफ होते हैं जिसकी वजह से आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन जहन में जब भी कभी उनकी कोई झलक पड़ती है, कोई एक उनका जो है वो अक्स नमूदार होता है तो हमें फ़ौरन से ख्याल आ जाता है अच्छा इनके साथ तो हमारा ऐसा वक्त गुजरा है, इतना अच्छा वक्त गुजरा है। और वो वक्त जो है वो असल में वो यादें जो होती हैं या वो जो एक जो सिलसिला जुड़ जाता है ना, वो मुझे लगता है उस वक्त की नस्बत से ही जुड़ता है कि अगर वक्त वो अच्छा गुजरा हुआ हो तो वो हमें जो हमारी यादें होती हैं वो अच्छी लग रही होती हैं, और अगर वो वक्त अच्छा ना गुजरा हो तो हम कहते हैं छड्डो बरे मिट्टी पाओ अग्गे चलो। तो इसलिए कोशिश करेंगे जो वक्त है, हम सब का महदूद वक्त है, हम सब एक महदूद वक्त के लिए हैं, एक मखसूस टाइम के लिए हैं, तो कोशिश करें कि इस टाइम को हम जितना बेहतर कर सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उतना खूबसूरत करें, उतना बेहतर कर दें। अगरचे अपनी अना को दबाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल गल है, लेकिन फिर भी कामयाबी, सुकून, इत्मीनान इस पर पांव रखकर आगे जाने से ही हासिल होता है। वेल जी, ये जड़ा लॉन्ग वाचिया है तो 35-40 साल हो गए ने, अजे तिकर तो लभ्या नहीं, जो तुहानू कि लभदा है तो हम उन्होंने सांभ लेना, क्योंकि पुरानी गवाचिया चीज़ा

इट्स ऑल नेचुरल। इसी तरह बच्चों में भी है कि जो बच्चों की आईसाइट पहले बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के कमज़ोर होती थी, अब वो मोबाइल देख देख के कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। बच्चों को तो शायद इस एज में मालूम नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं अच्छी। तो कुछ थोड़ा सा कभी सख्ती से, कभी नरमी से, कभी म्याना रवि से, कभी रोब से, कभी किसी तरीके से उनको बचा के हमें लेकर चलना पड़ता है। फुल तलखी से भी नहीं हम चल सकते और खुली ढील भी नहीं छोड़ी जा सकती। तो इसलिए जो दरमियाना सा रास्ता है उस पर चलते हुए हमें उन्हें जिंदगी की जो गाड़ी है उस पर बिठाना है। और आजकल के दौर में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही मुझे लगता है कि यही है कि जो जनरेशन गैप है इसको कैसे लेकर चलना है।

वर्जुन 11 बजकर हो चुके हैं 24 मिनट आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजियां, मेरा आपका साथ है ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक। और आपके जो 4471 पे मैसेजेस हैं उन्हें मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। और मैसेजेस जनाब कहाँ से शुरू करते हैं? मैसेज हम जनाब हमने मैसेज किया जनाब शायद साहब ने और कह रहे हैं शाद बाग से और कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू सो वेरी मच। और कह रहे हैं कि जी दिल से दुआ और सलाम सब आरजेस को सलाम लीजिए। तमाम आरजेस तक आपका सलाम जो है वो पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। कुछ आरजेस तो सुन रहे हैं और कुछ नहीं सुन रहे, जो नहीं भी सुन रहे उन तक भी आपका पैगाम जो है वो चला गया। और इसके अलावा जी साजिद ने मैसेज किया, कह रहे हैं जी ग्रेट प्रोग्राम, थैंक यू सो वेरी मच। नुमान साहब ने कहा जी टाइटल बता के जाएगा। टाइटल जनाब टाइटल तो हमारे प्रोग्राम का जो है वो शब खेजियां हैं और जो टॉपिक हमारे आज के शो का है वो ये है कि आपको अपने वालदैन की कौन सी ऐसी नसीहत है जो अब याद आती है बहुत ज़्यादा और जो आपने अपने पल्ले बांधी हुई है या जो पल्ले बंध गई है वक्त के साथ वो कौन सी है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमें उमर शबीर ने मैसेज किया है और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हैं? मैं जनाब बिल्कुल ठीक। आपको अपने वालदैन की कौन सी ऐसी नसीहत है जो अब याद आती है बहुत ज़्यादा और जो आपने अपने पल्ले बांधी हुई है या जो पहले बंद गई है वक्त के साथ वो कौन सी है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जी

0: मैसेज किया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे मसूद वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर थैंक यू सो वेरी मच। और साबिर चौहान ने मैसेज किया कह रहे हैं हाँ मेरे बाबा कहते हैं पुत्र अच्छा ये कुछ थोड़े सा पंजाबी टच है मैं ना इसको थोड़ा सा अपने इसको मैं मुताबिक करके ना मैं इसके मुताबिक उतर के तो उसके बाद दोबारा इसको मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। तब तक जनाब आप ये वाला गाना सुनें और इसके बाद हम एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे। और आपको कौन से अपने मामा बाबा की जो नसीहत है वो अभी तक याद है या अब जो है वो आपको याद आती है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम जो गाना चला रहे होते हैं वो नहीं चलता और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो गाने इकट्ठे चल जाते हैं।
1: मैं लफ़्ज़ी रह गई दुनिया
0: वच यही जिंदगी है सरप्राइज हर दिन कुछ नया हर शाम कुछ नहीं एक नया मोड़

वैसे प्रोग्राम तो मेरा बन रहा था कि मैं बैक टू बैक एक सॉन्ग और प्ले कर दूं, लेकिन फिर मैं रुक गया क्योंकि मैसेजेस हैं वो मुझे मौसूल हो रहे थे और मैं उन्हें कह रहा था कि मजीद जो है वो अपने लिसनर्स को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। इंतज़ार कहते हैं कि वो तो जो दरख्त है ना उसको भी बूढ़ा कर देता है, शेर को भी बूढ़ा कर देता है, तो इसलिए इंतज़ार जो है वो कभी किसी को नहीं करवाना चाहिए ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। एनीवेज जी, हमें मैसेज किया जनाब साबिर चौहान साहब ने, और साबिर चौहान साहब को मैंने बताया था ना मैसेज, मैंने कहा था मैं इसे दोबारा पढ़ के तो फिर मैं इसे ऑनर करूँगा। एनीवेज जी, साबिर चौहान साहब कहते हैं कि मेरे बाबा कहते हैं पुत्र कच्ची बनी पैर नहीं रखना जहाँ तुम्हें कोई आवाज़ मारे, और कह रहे हैं आई लव यू बाबा जान। चलें जनाब, बहुत खूबसूरत बात, और बिल्कुल कच्ची बनी तो पैर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और बरसात के मौसम में इसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और शायद उनकी ये बात जो है ना बहुत गहरी है कि कच्ची बनी सिर्फ एक मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि जो शायद ज़िंदगी के मामलात में जो भी कह लें कि इंसान है ना उसको हमेशा किसी ना किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, एक साथ रहता है, और जो लोग वक्त पर आपका साथ ना दें शायद वो भी इसी कच्ची बनी में ही आते हैं। और बहरहाल कहते हैं कि मुश्किल वक्त जो है वो भी ज़रूरी होता है इंसान की ज़िंदगी में आना, कि वो आपको वो पहचान करवा देता है कि कौन लोग आपके साथ हैं और कौन आपके साथ नहीं है। एनीवेज बहुत शुक्रिया साबिर, आपका प्रोग्राम में शामिल हुए। ज़हीर अहमद साहब ने मैसेज किया टाउनशिप में, टाउनशिप से, और कह रहे हैं कि टाउनशिप में FM 101 FM लाहौर ऑन नहीं हो रहा काफ़ी दिन से, प्लीज़ चेक करवाएँ। ओके ज़हीर भाई, बहुत शुक्रिया, मैं आपका मैसेज जो है वो पर्सनली भी कोशिश करूँगा कि अरबाब इख्तियार तक पहुँचा दूँ कि उस एरिया में इसको चेक करवाया जाए लाहौर के, कि क्यों प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो आपके खूबसूरत से कानों तक जो है वो नहीं पहुँच पा रही, उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माजरा चाहता हूँ। और बिनते सिद्दीक ने हमें बहुत सारे मैसेज किए हुए हैं, और उन सभी मैसेज को तो पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चंद अच्छे मैसेजेस कर दिया करें इन बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस के बजाय। एनीवेज जी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे इस वक्त ये वाला गाना, और इसके बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे, और मुझे कहते हैं मसूद अहमद, मेरा आपके साथ रहता है हर हफ्ते के रोज़ रात 10 से 12 में इन द प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड शब खेजियाँ, और हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपके लिए अच्छे तरीके से पेश करें, आपका जो वीकेंड है वो अच्छे से गुजरे, उसका आगाज़ जो है वो अच्छे तरीके से हो, जो भी पिछले महीने की परेशानियां, सॉरी पिछले वीकेंड की जो परेशानियां हैं वो आप ख़त्म कर दें, और एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए दिल के साथ आप अपने अगले वीक का आगाज़ करें, क्योंकि ज़िंदगी ने तो नहीं रुकना, हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, और अगर वक्त पर चेंज कर लें तो वो सबसे बेहतर होता है।

वेल जी, बाज़ औक़ात होता है कि इंसान का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा होता, लेकिन वो किसी को कुछ कह भी नहीं पाता, कुछ बता भी नहीं पाता। ऐसा लगता है कि अल्फाज खत्म हो गए इंसान के पास।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की, और जिसमें हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि वक्त गुजरने का जो है वह बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमें वक्त गुजरने का अंदाज़ा नहीं हुआ। 2 घंटे गुजर गए, 10 बजे हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था और अब 12 बजने को हैं। बात हम इस हवाले से कर रहे थे कि जनाब अपने वालदैन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी नसीहत, कोई चीज़ जो आपके दिलो दिमाग में बैठ चुकी हो और तब आपको उसका एहसास ना हुआ हो, लेकिन अब आपको बहुत एहसास होता है। एहसास किसी भी वजह से होता है, उनके ना होने की वजह से होता है, अपने उस सिचुएशन पे, उस मोड़ पे आके खड़े होने की वजह से एहसास होता है कि जिस मोड़ पे तब वो खड़े थे और उन्होंने वो बात कही थी और हमने उसको बस हवा के झोंके की तरह भुला दिया। बहरहाल फिर जब इंसान ऐसे किसी मोड़ पर आकर खड़ा होता है ना, तो सिर्फ एक बात नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो याद आती हैं, बल्कि हर वो बात भी याद आती है जो जिसको हम भूल चुके होते हैं, जिसको हम एक आम सी बात समझकर जो है वो इग्नोर कर चुके होते हैं। एनीवेज जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि मेरे जो जहन में बहुत सारी बातें, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, हैं जिनको मेरे लिए कंपाइल करना बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती कि किस चीज़ को मैं इम्पोर्टेंस दूं और किसको इम्पोर्टेंस ना दूं, या कौन सी चीज़ जो है वो याद रखने के काबिल है और कौन सी चीज़ है जो याद रखने के काबिल नहीं है। हर वो मंज़र जो है वो आँखों के सामने आता है, हर वो सोच जो है वो दिमाग में आ जाती है जो पहले नहीं आती थी, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे जो कभी कभी आता है ना, वो बहुत एक हौसले के हवाले से आता है कि जब भी कोई परेशानी की, या कह लें कि कुछ ऐसी कैफियत भी यकीनी की कैफियत बनती थी, तो कहते थे कि काका घबराना क्यों है। यह जी गल्लां ते मर्दां ते पाइयां ते आंदियां ही ने, ते घबराईदा नहीं हुंदा। तो बिल्कुल जनाब, घबराना जो है वो किसी भी सिचुएशन में जो है वो इंसान को मज़ीद परेशानी में ही मुब्तला करता है और मज़ीद ही हमारे लिए परेशानियों को बढ़ाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद भी ना घबराएं और दूसरों को भी जो है वो कुछ ऐसा मौका ना दें कि उनके लिए भी कोई परेशानी की, कोई घबराहट की जो है कोई बात बने, क्योंकि जो सेंसेस जो हमारी चल रही होती हैं घबराहट में, वो भी जो है वो काम नहीं करती हैं। और फिर ये कि वालदैन के साथ जितना भी वक्त आपका गुजरता है, जितना भी गुजरता है, चाहे वो उनकी डांट डपट में गुजरता है, उनके प्यार में गुजरता है, किसी तरह से भी गुजरता है, वो आप यकीन माने कि उसमें चाहे वो उसका इजहार कर पाएँ या ना कर पाएँ, और चाहे उनके गुस्सा हो, कुछ भी हो, उसमें छुपी हमारी बेहतरी ही होती है, उसमें पनाह हमारी बेहतरी ही होती है, क्योंकि नुकसान वो अपना कर सकते हैं, लेकिन कभी अपनी औलाद के लिए वो नुकसान जो है वो नहीं चाहते कि उनकी औलाद किसी नुकसान से जो है वो दोचार हो। अब उन्हें वक्त जो है वो किसी ऐसे मोड़ पर ले आए अगर कि जहाँ पर उनकी कोई तदबीर जो है वो काम ना करती हो, या उनकी कोई तदबीर जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से को उलट हो गई हो, तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी इंटेंशनली जो है कोई ऐसे वालदैन मुझे नहीं लगता कि होंगे कि जो जानबूझकर नुकसान करके जाएं अपने अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए जो भी उनके साथ आपका टाइम है, जो भी वक्त है, उसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके से गुजारें, बेहतर तरीके से गुजारें, और सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप उनकी फरमाबरदारी में गुजार लेंगे और उनकी खिदमत में गुजार लेंगे तो वो सबसे बेहतर है। एनीवेज ही वक्त है अब आपसे इजाज़त देने का, इंशाल्लाह इन सांसों ने अगर वफा की तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते को रात 10 से 12 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह एंड हैज़ अल वेस्ट।

is ahead.

डायलिंग फ्रिक्वेंसी FM 101 आपके इंटरनेट की अगर आपके पास सहूलत मौजूद है तो दोस्त दो आप radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। अल्फाज टूट के कट के आप तक पहुंचते हैं और आप जानते हैं कि जो है वो इंसान जो है वो खता का पुतला है और इंसान से गलतियां होती हैं। पैनल अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। अब आपकी जो ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है वो आपके दोनों कानों में आपको आवाज़ आ रही होगी। थोड़ी देर पहले मैं भी परेशान हो गया था कि इतने महंगे हेडफोन यूसुफ भाई ने मंगवाए हैं और वो उन्होंने ख़राब कर दिए हैं कि मोनो में ट्रांसमिशन आ रही है। और थैंक्स टू मास्टर कंट्रोल रूम जो हमारे इंजीनियर्स हैं 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन महीने के 30 और साल के 365 दिन जी ट्रांसमिशन के हवाले से मौजूद रहते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा MCR जो मास्टर कंट्रोल रूम डिपार्टमेंट हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो आप तक क्लियर क्रिस्टल ट्रांसमिशन इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। मौसम जैसा कि आप जानते हैं मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है दोस्तों। और आप FM 101 के इस प्लेटफॉर्म से एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सुनते हैं। नदी नालों से आपने दूर रहना है, बिजली के जो खंभे हैं इनसे आपने दूर रहना है, जो बिजली की तारें अमूमन आपने देखा होगा जहाँ बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर घर की जो छत होती है उसके साथ से जो है वो हमारे माशाल्लाह महकमे बरकियात जो है जो उन्होंने वहाँ से तारें गुजारी हुई। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस मौसम में एहतियात करनी है, नदी नालों से दूर रहना है और अपने बच्चों का आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जल्दी जल्दी दुआ करें इनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो, माएँ घर में पागल हो गई हैं। और बस ये दुआ करती हैं कि कब इनकी छुट्टियां ख़त्म हों, ये घर से स्कूल जाएं और हम कम से कम सांस लें। हालांकि तब ज़्यादा टफ रूटीन हो जाती है लेकिन आजकल चूंकि बच्चे घर में रहे कि पढ़ाई वगैरह तो बहुत कम जो है वो फॉलो करते हैं, गेम्स डिफरेंट किस्म के और सबसे ज़्यादा जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। ज़बरदस्त सा म्यूज़िक आपको सुनाएंगे 12:30 तक और उसके बाद एक टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने सेगमेंट को फॉलो करना है क्या पता, क्योंकि मौसम बाहर जो है बहुत जबरदस्त है इस वजह से आपको हम जबरदस्त किस्म का म्यूजिक सुनवाएंगे। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल फैन पेज, वहां पर पोस्ट मौजूद होगी, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 4471 पे आप SMS करेंगे, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 44771 पर।

बारह बज के 16 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले आज का टॉपिक आपको बताएंगे और आज हम जो लाइव कॉल्स हैं उस पर टॉपिक नहीं, कुछ और डिस्कशन करेंगे। जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में दोस्तों मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि आप 12:45 के बाद ना जो दोस्त पोइट्री सुनाना चाहते हैं तो आपकी ख्वाहिश तब तक जब तक ऊंचा शो का आगाज़ नहीं हो जाता। सजाद भी जब आया करेंगे, ऑब्वियसली उनकी फील्ड है और वो उसमें बहुत अच्छे हैं तो वो ज़रूर अपने प्रोग्राम में जो है चीज़ें शामिल करते हैं। लेकिन वो दोस्त जो मेरे प्रोग्राम में मतलब शुरू में कॉल करके शायरी सुनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए है दोस्तों ये इंशाल्लाह, चूँकि साथ साथ हम अनाउंस करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें याद हो जाएंगी कि कब कब और कैसे क्या चीज़ें प्ले होती हैं, सेगमेंट क्या है। तो 1:45 के बाद हम कॉल शामिल करेंगे, शॉर्ट कॉल्स होंगी। जस्ट आपने नाम बताना है और कोशिश करनी है कि जो गज़ल या जो शेर आप सुनाएंगे शॉर्ट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मौका मिल सके। लास्ट टाइम सिर्फ एक ही कॉल हम प्रोग्राम में शामिल कर सके थे चूँकि बहुत ज़्यादा दोस्तों को पता नहीं था, तो ये आज मैं आपको शुरू में अनाउंस कर रहा हूँ कि कॉल्स हम 1 बजे शामिल करेंगे। उससे पहले ढेर सारी गपशप करेंगे, आपके बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान तक का, वहाँ पर जो आप कॉमेंट करेंगे 4471 पे वो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और टॉपिक जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने इस पर बात करनी है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत जल्दी जो है वो उम्र से बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां उन पर आन पहुंचती हैं और जो अभी उन्होंने अपना बचपन, अपनी जो टीन एज है, जवानी जो है वो अपनी ख्वाहिशात या अपने ख्वाब पूरे करने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये एक सवाल ये भी है कि इस सब के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ें मैनेज करने के बावजूद अपने आप पे ना अच्छा खासा खर्चा करते हैं, तो आप में क्या पर्सनैलिटी है, क्या आप खुद पे मतलब अपने ऊपर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे जूतों के लिए या अच्छे हेयर स्टाइल के लिए।

आप सुन रहे हैं जी FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी। हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह लेओ खेड़े पास तुर पे हो। चलें जिस ट्रैक के बाद आते हैं, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें, मेरे साथ रहेगा।

जी तो दोस्तों, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं और 12:24 हो चुके हैं। जैसे ही हमने टॉपिक अनाउंस किया, कुछ फीडबैक दोस्तों हम तक पहुंचता है, उसको प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और अब मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन जो है अब तमाम दोस्तों तक बड़ी ज़बरदस्त आ रही होगी, और चूंकि अब हमारी सारी चीज़ें तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। सलमान भाई, आप सुन रहे होंगे, आपको तो पता ही है ये मामला जो है, अभी जब प्रोग्राम करते थे कभी कभी आते साथ सबसे पहले ये चीज़ें सेट करनी हैं, वो करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक हो गया। अच्छा सलमान भाई, आपने जो मैंने टॉपिक अनाउंस किया कि आप खुद पे खर्चा करते हैं और ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रही है ना, जो मुझे मैसेज किया है वो मेरे ख्याल से वो शायद बड़ेपन में कर रहे हैं कि यार इस तरह की चीज़ें ऑनर नहीं कहते। कहते हैं दूसरों पे खर्चा करना अच्छा लगता है, आप खुद वो ईद पे भी कपड़े नहीं बनाते, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, नया पुराना क्या और आगे पीछे कभी जो है वो बना लेते हैं, लेकिन आपकी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रही है हमने जो देखा माशाल्लाह, हमेशा साफ सुथरा सिलसिला, अच्छे कपड़े। हमारे साथ सना मौजूद है। सना, आपका बहुत शुक्रिया, समंदर पार से आपने पार्टिसिपेट किया जी। डेफिनेटली आपका प्रोग्राम, आपका जो कमेंट है वो हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मज़ीद भी हम कुछ गपशप करेंगे। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जी सोशल मीडिया पर लास्ट वीक जो है काफ़ी गर्मा गर्म रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, कुछ कॉमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपने सर इस हवाले से भी बात करनी है। चलें जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम उसके आपके सामने ज़रूर रखेंगे। सबसे पहले जी भी हम कुछ गपशप करेंगे आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जी सोशल मीडिया पे लास्ट वीक जो है काफ़ी गर्मा गर्म रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपने सर इस हवाले से भी बात करनी है।

इंटरनेशनल था थर्सडे भी वो काफ़ी जल्दी आए थे, मुलाकात हुई थी, लेकिन छुट्टी के हवाले से उन्होंने नहीं बताया। सारा कहते हैं सिर्फ मैं ठीक है, आप कहती हैं सिर्फ फुफ्फो खाला नहीं सब पागल हो गए। ये बात उसके जो है वो तनाजुर में कह रहे हैं, जो मैंने कहा था ना कि बच्चों को छुट्टियां हैं तो घर में जो रहने वाली ख्वातीन है मतलब आधा उनका मेंटल निज़ाम जो है डिस्टर्ब हुआ हुआ, चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और ये चूँकि छुट्टियाँ हैं, बच्चे जो हैं कुछ नानों के घर भी जाते हैं और कुछ जो हैं वो दादी दादा की तरफ जाते हैं, तो बड़ा भल्ला गुल्ला खप मची रहती है। जिस घर में जाते हैं उस घर की जो बहू होती है उससे बंदा पूछे कि यार इनकी छुट्टियां जो हैं आपको कैसी अच्छी लगती हैं। सारा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फसीहा जन्नत आपने मैसेज किया, थैंक यू सो मच, गुड जॉब आपने लिखा है। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी जो फॉर्मेट होता है ना, जो सवाल आपसे पूछा जाता है उस पर प्लीज़ कॉमेंट किया करें, ताकि आप दोस्तों की राय जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो। और अच्छा लगता है कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं, नए लोग आते हैं बात करते हैं। आयशा वासी आपने भी जिशा भाई वाला सवाल किया, मुझे इस हवाले से आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं लाजमी बताता हूँ। इसके अलावा जी बाबर अली साहब मौजूद हैं, ओल्ड सॉन्ग पुरानी याद ताज़ा हो गई, चलें जी अच्छी बात है आपकी पुरानी याद ताज़ा ही। मैडम आजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया मैम आपके मैसेज का। और इसके अलावा जो मज़ीद पैगामात हम तक पहुँचे हैं उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर जो है नबीहा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, आपने मैसेज किया कि बारिश हो रही है और जो ट्रैक आपने शामिल किया था पहली नज़र, उससे काफ़ी ज़्यादा जो पुरानी यादें हमारी जो हैं वो ताज़ा हुई हैं। चैलेंज ये भी अच्छा हो गया। ज़रूर जी आप लोग मुझे टॉपिक के हवाले से भी कॉमेंट करके बताइएगा कि इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं। इसके अलावा फैसल ने मैसेज किया हमें रावलपिंडी से, फैसल कहते हैं जी बारिश हो रही है और साथ साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आज हम आपको ना बड़ा अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनवाएंगे, आपने मेरे बिल्कुल साथ साथ रहना है। और इस वक्त हम शामिल करने जा रहे हैं राहत फतेह खान की आवाज़ को, ये आप सुने, बहुत खूबसूरत ट्रैक है, इसके लिरिक्स बड़े कमाल के हैं, म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त है, और जिनकी आँखें खूबसूरत हैं ये तो उनके लिए फिर

0: बारह बजकर 33 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। यहाँ पर इस वक्त 12:33 हैं और दीगर ममालिक में आप जानते हैं कि डिफरेंट जो है वो टाइमिंग है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग करते हुए रेडियो सुनते हैं अभी भी। मतलब अगर आप फैमिली में किसी जगह पर जाएँ और किसी से, वैसे हर किसी को नहीं पता, बहुत कम फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है कि यार ये रेडियो में काम करते हैं, रेडियो में इनका कोई प्रोग्राम वगैरह होता है। खुदा ना खास अगर किसी को पता चल जाए ना, कभी बात हो रही है तो लोग पूछते हैं यार अभी भी कोई रेडियो सुनता है, तो उनको फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा टाल देता ना जब कोई नहीं सुनता, बस हम खुद ही जाके प्रोग्राम करते हैं और दो चार लोग सुन लेते हैं और वो सुनते हैं जो रेडियो के अंदर ही होते हैं। तो रेडियो की जो इंपॉर्टेंस है जी, वो दोस्तों कभी ख़त्म नहीं हो जाती, कभी नहीं ख़त्म हो सकती। ख़ासकर आप दूर दराज इलाकों में देखें जहाँ पर अभी जो मोबाइल फ़ोन जो है, जो एंड्रॉयड फ़ोन अभी तक नहीं पहुँच पाया, हालाँकि बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर कर लिया है और इंटरनेट की दुनिया आज पहुँच चुकी है, और लेकिन इसके बावजूद जो लोग रेडियो को पसंद करते हैं, रेडियो से मोहब्बत करते हैं, वो लाजमी रेडियो सुनते हैं। आप पहाड़ी इलाकों में देखें, इंफॉर्मेशन के लिए आजकल रेडियो लाजमी ट्यून किया करें जी। महकमा मौसमियात की जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो भी हम शेयर करते हैं। इसके अलावा परदेसी भाई जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हमें सुनते हैं, सऊदी अरेबिया से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं हमें। मेरे बहुत अच्छे 2-3 दोस्त हैं जो जब स्कूल कॉलेज में होते थे तब तो बिल्कुल मतलब दोस्तों में आपको पता है कि वो इज्जत रख रखा वाला मामला नहीं होता, लेकिन एक सर्टन टाइम आता है वो कहते हैं कि यार चलो तुझी भी किसी कम से बंदे निकले हो, तो वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट में है, तो कभी कभी जो है वो स्टेटस देख के जो है वो मैसेज कर देते हैं जी हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसके अलावा कतर से हमारे साथ मौजूद रहती हैं सना, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमेशा फीडबैक देते हैं प्रोग्राम के हवाले से। और मुझे याद है फुटबॉल का वर्ल्ड कप हम कवर कर रहे थे, दरमियान में क्रिकेट की बात आई, आपने कहा जी क्रिकेट की बातें करके मज़ा ना ख़राब करें हमारे फुटबॉल का। गल्फ़ में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो दोस्तों फुटबॉल को फॉलो किया जाता है, बल्कि फुटबॉल ही ज़्यादातर वहाँ पर फॉलो किया जाता है। क्रिकेट एशिया में ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पे, लेकिन अदर कंट्रीज़ में फ़ुटबॉल चूँकि नेशन वाइड एक बहुत बड़ी गेम है। और लास्ट जब हमने प्रोग्राम किया था फीफा वर्ल्ड कप का, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत शुक्रिया। क्या आप अपने ऊपर खर्चा करते हैं या नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक है। जब आप लाइव कॉल करेंगे तब हम डिफरेंट चीज़ें आप लोगों से पूछेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जा के कॉल किया करें, बड़ा मुश्किल होता है जी, बड़ी मुश्किल से एनर्जी जमा करके सेव करके एक अच्छी एनर्जी के साथ प्रोग्राम हो रहा होता है। तो तुसी हेलो की हाल है तड़ा, थोड़ा सा ये ख्याल किया करें। और मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जब करता हूँ तब भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार टॉपिक को फॉलो किया करें, जो हम खबरें बता रहे हैं खेलों की दुनिया से उसको फॉलो किया करें, और रात का ये जो प्रोग्राम होता है इसमें प्लीज़ जो चीज़ जो माहौल बना तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखा करें। करनी तो फिर भी तुसी अपनी होंगी है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कर लेता करो। अल्लाह ले ओ अस्सलाम वालेकुम जी। और एक ज़ई मास्टर सियालकोट से मौजूद हैं, आपने एक पश्तो ट्रैक की रिक्वेस्ट की है मेरे भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा ट्रैक शामिल करें जो स्पेसिफिकली आप लोग ट्रैक बताते हैं, ये अगर ना शामिल हो सके तो प्लीज़ नाराज मत हुआ करें। इसके अलावा हमारे साथ रिमशा मौजूद हैं रावलपिंडी से। रिमशा कहती हैं जी आपने डॉक्टर नबिया का जिक्र किया, ये कौन सी डॉक्टर नबिया जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल नहीं, ये वो नहीं है जी, ये पता करके आपको बताते हैं कौन सी, लेकिन वो नहीं है जिनका आप कह रही हैं। और उनका भी देखे मतलब क्या क्या है बंदा, अल्लाह लियो किड़े पास टूर पे हो
1: सुरीली अखियों वाली।
0: मतलब अगर वैसे एक स्पेसिफिकली किसी के हवाले से, हर किसी की जाती जिंदगी है, जाती जिंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप पर्सनालिटीज के तौर पर मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे, तो बहुत सी दुनिया आपको फॉलो करती है, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा जो है वो कीमती रिश्ता होता है, बड़ा पाक रिश्ता है मियाँ बीवी का, और इसको एक दूसरे का लिबास कहा गया है। खुदा ना ख्वास्ता ये जो है अगर इस तरह की खुला वाला मामला या अलहदगी वाला सिलसिला किसी भी जोड़े के दरमियान होता है तो बड़ी सख्त इसके हवाले से हिदायत हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के पर्दा रखना होता है, एक दूसरे पे बातचीत नहीं करनी होती। लेकिन हैरानगी की बात है, चलें वो तो ठीक है पढ़े लिखे भी हैं लेकिन शऊर नहीं है, अकल की जो टेलीविज़न और ये जब से सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया आया ना, अपनी रेटिंग्स के आप यकीन जानिए जो उनसे सवालात होते हैं और जिस तरह वो मैडम और वो जो उनके हस्बैंड हैं वो जवाब देते हैं, हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे बात करने का, कमेंट करने का दोस्तों किसी को कोई हक नहीं है। ये चूँकि एक मैसेज भी आया था इस हवाले से बात करना, तो आपको ना माशरे में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो ये हमेशा से जो है एक जो है ये इसका इस्लामिक तारीख है कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे का लिबास हैं, خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے آپ کی علیحدگی والا معاملہ ہوتا تو آپ نے بہت پردہ رکھنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کرنی. لیکن آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں اس سارے معاملے کو لے کے, اللہ تعالیٰ جی سب پہ رحم کرے, ان تمام چیزوں سے دور رکھے, چونکہ بڑا افسوس ہوتا ہے اور اسی لیے ان چیزوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. لاسٹ لاہور میں بھی ایک بہت بڑی ایک کاؤنٹ لکھا ہوا تھا کہ اتنی تعداد میں خلا جو ہیں وہ فیملی کورٹس میں گئی ہیں. تو یہ ٹیمپرامنٹس کے بھی ایشوز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں جب ٹائم آیا تھا تو مرد حضرات جو ہیں بہت زیادہ گھروں میں رہنا شروع ہوئے تھے, تو پھر بھی یہ چیزیں کافی زیادہ بڑھ گئی تھیں. بہرحال اس ٹاپک کو یہاں کلوز کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. اور آج کل اس ریٹنگ کے چکر میں, ویوز کے چکر میں بہت معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں. اور میں حیران ان پرسنالٹیز پہ بھی جو اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے اس طرح کے کھل کے بات کرنا. اور کوئی بھی چیز دنیا میں حرف آخر نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے الفاظ کا چناؤ وہ رکھیں کہ کل کو اگر یہ الفاظ واپس لینے پڑیں تو آپ کسی جو ہے وہ عزت والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں. ہمارے ساتھ جی فرحان نے میسج کیا راولپنڈی سے. فرحان کہتے ہیں بھائی ٹیسٹ میچ بھی چل رہا ہے, سونے دس دیاں گے کدی نہیں جلدی تسی مچائی ہوئی ہے, وہ بھی تمہیں نال دس دیاں گا. facebook.com/fm101 چینل پاکستان پہ دوستوں آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کے کامنٹ شامل نہیں کرتے. آج جب میں وہاں پہ کامنٹ شامل کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں.

फातिमा हमारे साथ जी आजाद कश्मीर से आपने पार्टिसिपेट किया। फातिमा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काफ़ी अरसे बाद आपने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अरसा जो आपने किसी भी प्रोग्राम में फीडबैक नहीं दिया और आज के प्रोग्राम में आपने फीडबैक दिया। आप कहती हैं जी आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो खर्चा करती हैं और हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद आती हैं, आपका शौक जो है उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा इतना ही खुला हाथ दे, इतने ही आपके नसीब अच्छे हों कि जैसे आप अभी अपने घर में चूँकि जब जो है वो बच्चियाँ अपने घर में होती हैं, ख़वातीन बेटियाँ खुल के खर्चा होता है और अल्लाह ताला आपके नसीब आगे भी ऐसे करें कि आप खुल के तमाम चीज़ें जो हैं वो जिस तरह आज आप इंजॉय कर रही हैं या आप जिंदगी आजकल ज़िंदगी की जो चीज़ अच्छी लगती है वो ख़रीद लेती हैं बाद में भी इंशाल्लाह ऐसा। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मौसम बहुत प्यारा हो गया जी, आपने मैसेज किया। समरा खलील हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं और आपने ये भी कहा कि साथ साथ सैलाबी सूरत हाल भी है, इसलिए दिल काफ़ी उदास, इसमें कोई शक नहीं है जी। तमाम न्यूज़ में रेडियो पाकिस्तान से भी हर घंटे के बाद जो न्यूज़ होती है उसमें भी तमाम सूरत हाल इस हवाले से बताई जा रही है। तो मैंने भी प्रोग्राम के आगाज़ में आके इसी हवाले से बात की थी कि आप लोगों ने ख्याल रखना है, एहतियाती तदाबीर जो हैं, चूँकि ऑब्वियसली जो नदी नालों के इर्द गिर्द जो करीबी जो दरियाओं के करीब घर हैं या जो एरिया है उनको पहले से अलर्ट कर दिया जाता है और इस दफ़ा NDMA ने तमाम सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा आपने कहा जी ठीक हो गया जी, आपने डॉक्टर नबिया के हवाले से बात की है, हमने ये टॉपिक क्लोज़ कर दिया जी। किसी के हवाले से क्या बात करें, अपने हवाले से ज़रूर आज इस टॉपिक पर ज़रूर बात कीजिएगा। समरा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं कि इसमें क्या ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं, ख़ुद पे खर्चा होना चाहिए या नहीं। एक और कमाल के नंबर दोस्तों आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज चूँकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है,

12:46 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं जी? लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, इस वक्त हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है तमाम दोस्तों को कहेंगे जी खुश आमदे। ड्राइव करते हुए प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग करें, चूँकि इस वक्त मानसून का मौसम है और वैसे भी जब बारिश होती है तो रोड पर काफ़ी ज़्यादा स्लिप मौजूद होता है। मैं चूँकि बहुत लेट नाइट ट्रैवलिंग होती है कि हफ्ते वाले दिन भी, और चूंकि मेरा जुमरात और जुमा 2 दिन प्रोग्राम होता है तब भी लेट नाइट वापस जाना होता है, तो इस्लामाबाद की रोड्स चूंकि बहुत खूबसूरत बनी हैं, काफ़ी खुली रोड्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्त जो हैं वो रात की तारीकी और रोड पे रश ना होने का ठीक ठाक फ़ायदा उठाते हैं। और एक चीज़ तो मैं कह के मैं खुद बहुत थक गया हूँ कि रॉन्ग वे मतलब कितना एक पेट्रोल बचा लेंगे, वैसे बचा लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, चूँकि आजकल तो रोज़ झटका लगता है। मतलब रात 11:30 या 11:40 के बाद आपको एक न्यूज़ आती है जी, हेलो जी 3 रुपये महंगा हो गया, 4 रुपये महंगा हो गया, एक ही बारी कर दे अल्लाह आलियो ताकि वो तसली रहती है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर ना टेंशन होती, पहले तो ये होता था ना कि हर थर्सडे को आपने जाके टैंक फुल करवाना है बाइक का या गाड़ी, अल्लाह ताला ने आपको दिए तमाम मामला, हूँ जरा डेली टेंशन, बाबा ठीक है यार पवा लेंगे, पता नहीं सस्ता होएगा 35 पैसे तो महंगा होएगा 4 रुपये या 5 रुपये। बहरहाल अल्लाह करे कि तमाम मामला जी ठीक हों, चूँकि बहुत मुश्किल जो होगी है जी जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए अब गुजारा करना। टमाटर का रेट खाली आप जाके बाज़ार में बदल करें, ये जो घर के ख़वातीन जो हैं जो घर के सारे मामला देखती हैं ना, जिन्होंने सब्ज़ी के मामला भी या बाकी जो ग्रॉसरी वगैरह वो चीज़ें देखनी होती हैं, उनसे पूछा करें कि आजकल मतलब टमाटर की जगह वो क्या यूटिलाइज़ करती हैं, इतने महंगे मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कहाँ पे उसकी प्राइस पहुँच चुकी है। अल्लाह ताला जी आसानियाँ करे, चूँकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना अब ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इन पे हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, मतलब बाकी चीज़ें इंसान कब सोचेगा कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, उसको मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करानी है, आर्मी में भेजना है, नेवी में भेजना है, किसी फोर्स में भेजना है, क्या करना है, बाहर भेजना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, नहीं जी साड़ी सब तो पहली टेंशन बिल किस तरह जमा होएगा। अल्लाह ताला जी सबके लिए आसानियां करे। और ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली मुझे अच्छी तरह याद है जब अल्लाह ताला मेरे वालिद को सेहत वाली ज़िंदगी दे हमेशा, आमीन। जब घर में वो ऑफिस से आते थे ना, मतलब ऑफिस से घर आए और उनकी ना नज़रें जो होती थी, मैंने बहुत दफ़ा मॉनिटर किया, एक पंखे पे है, एक कमरे की लाइट पे है, दूसरे पे है, और हमेशा वो एक जुमला कहते थे जब 2-3 लाइट एक्स्ट्रा जल रही होती थी कि भाई जी रोशन पाकिस्तान आप लोगों ने बनाया हुआ है, बिल कौन देगा। उसने मुझे ना एहसास नहीं होता था कि यार अब्बा जान क्यों आके रोज़ बिस्ती कर देते हैं बिल की वजह, तो क्या हो जाएगा यार, कितना बिल आ जाएगा मैक्सिमम। लेकिन सुने हूँ पता चलता है पिछले 1.5-2 साल से जब ये जिम्मेदारी पड़ी है ना कि कैनी साहब बिल जो है वो आपने पे करना है, तो मैं घर में एंटर होने के बाद पानी बाद में मांगता हूँ, ये देखता हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो किधर जल रही है, क्या बंद किया जा सकता है, मतलब कहाँ से बेचूत की जा सकती है।

ज़ोर अहमद की आवाज़ को दोस्तों प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उसके बाद एक बजे के बाद आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला। लाइव कॉल्स का टेन्योर हमने थोड़ा कम कर दिया, पहले आपको पता है कि 12:35 या 40 मिनट के बाद हम कॉल शामिल करते थे, लेकिन अब ढेर सारी आपसे बातें क्या करेंगे जी, घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं है।

चले जी दोस्तों, अब आपकी लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे 051-111-000-101 और 051-920-2540 पे दोस्तों आप लोगों ने कॉल करनी है, ये भी वहीं पे रख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो प्लीज़ आपसे जो रिक्वेस्ट है वो फॉलो करनी है आपने, जो है 1:45 के बाद आप हमें अच्छी शायरी सुना सकते हैं, और उससे पहले जो है जो हम अभी फ़िलहाल जो अनाउंस करने जा रहा हूँ उसको हम फॉलो करेंगे। एक अदर टॉपिक तो ऑब्वियसली रखा हुआ है, जो दोस्त हमें 4471 पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फेसबुक पे उनकी पार्टिसिपेशन है, उस पर हम वो गपशप करेंगे। अदरवाइज़ जो है टंग ट्विस्टर जो है हम लाइव कॉलर से आज पूछेंगे। थोड़ी देर पहले हमने डेमो भी किया एक स्टूडियो में, तो बड़ा ज़बरदस्त वो मामला भी रहा। राजा तोकीर साहब थे, और इसके अलावा नुमान अब्बासी आरजे, आज उनका भी प्रोग्राम था, और मोहम्मद यूसुफ साहब तो इधर ही होते हैं माशाल्लाह, उनसे भी करवाया। तो आप भी जो लाइव कॉल पे करेंगे टंग ट्विस्टर में, आपको मतलब एक लाइन आपको बताऊंगा, वो 5 से 10 सेकंड में आपने तेज से वो पढ़ना होगी। देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल होती है। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दूसरे लोगों के गले शिकवे इस प्रोग्राम में, मतलब उसकी कॉल मेरे शो में नहीं मिली और उसने मुझे ये कह दिया, लास्ट प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हुई, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ही इन चीज़ों को फॉलो करें।

0: कुछ दिन पहले दोस्तों आप लोगों की नजर से ना एक वीडियो गुजरी होगी, मतलब ऑब्वियसली वो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी इन द सेंस कि उनकी जो ना बड़ा ज़बरदस्त फॉलोअरशिप है और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की, सुनील मंच साहब की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, गाड़ियों की दुनिया में बहुत उनका नाम है। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे शुरू हुआ तो उन्होंने एक वीडियो, हालांकि उस वीडियो की प्रॉपर ना जब एनालिटिक्स देखे गए तो बहुत अच्छे खासे माशाल्लाह उन्होंने पैसे कमाए हैं, लेकिन ये है कि आपको ये तो पता है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होती है वही हिट होती है। उन्होंने कहा जी आप अगर मेरी किसी भी फ्रेंचाइज से तीन चार जो पाकिस्तान में उससे शॉपिंग करेंगे 20,000 रुपये से ज़्यादा की तो आपको मेरा साइन किया हुआ ना एक फ़ुटबॉल मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई जी कौन हो तुम, रोनाल्डो हो मैसी हो या नेमार हैं आप कौन हैं? लेकिन देखें उन पर तनकीद हुई लेकिन माशाल्लाह उनका रीच जो है बहुत ज़्यादा गई। तो अभी यूसुफ भाई ने मुझे एक आइडिया दिया, आप जो टंग ट्विस्टर खेलने जो जीतेगा उसको आपने ये कहना कि आप हमारे साथ खाना खाने का मौका मिलेगा। तो मैं उनको ये कह रहा था कि सेलिब्रिटी हैं भाई, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जी आने वाले प्रोग्राम्स में हमको डिसाइड ऐसे करेंगे। हमारे एक दोस्त होते थे उन्होंने कहा था हम बुक्स देंगे, एक आधी बुक्स बुक जो है वो सलमान भाई ने पहुंचाई भी थी। शर्ट्स के हवाले से हमने हाउस डेट में ये सिलसिला रखा रहा, वो हम करते रहे। तो गेम शो के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी होंगी। तो आज के दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो कॉलर हैं वो जाग के कॉल करेंगे, हैंड फ्री ध्यान किया करें, चूँकि जब दूसरे लोग जब सुनते हैं तो डिस्ट्रॉक्शन बहुत ज़्यादा जाती है। सबसे पहली कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चले जी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कॉल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक जी, कौन बात कर रहा है कहाँ से? लाहौर से इरम बात कर रही है।
1: सर माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मैंने आपका प्रोग्राम शुरू सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा।
0: बहुत शुक्रिया इरम, लाहौर से, मतलब आपने पहली दफा इस्लामाबाद की ट्रांसमिशन सुनी है?
1: नहीं सर, पहले भी सुनते हैं।
0: अच्छा ठीक हो गया, तो आज मतलब कॉल पहली दफा मिली है?
1: जी सर।
0: चले बहुत शुक्रिया। अच्छा
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है और टॉपिक पे हम बात करेंगे।
0: टॉपिक
1: सर मुझे अब सबसे ज्यादा दूसरों पर अच्छा लगता है।
0: अच्छा आपको दूसरों पर खर्चा करके ज्यादा अच्छा लगता है?
1: जी
0: ठीक है। लाइव
1: कोई जरूरतमंद हो, मतलब किसी को उधार ले लेता है और दे भी दूं तो वापस मांगने का दिल भी नहीं करता।
0: अच्छा आप तो फिर बहुत अच्छी हैं, आप तो फिर सारे आपसे उधार मांगते होंगे, कहना केड़ा वापस मांगना है?
1: तो सर जब मैंने मांगना नहीं तो वो खुद दे देते हैं।
0: ये अच्छी बात है, मतलब खुद देना चाहिए, मतलब अपने पैसे उधार जब इंसान वापस मांगता है तो लगता है कि हम उधार मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान में ये सिलसिला होता है, अपने ही पैसे वापस ना मंगते बन के मंगना पैंदा है।
1: हाँ सर, और माशाल्लाह सब सुनने वालों को सलाम, और सब स्पेशल अनिल आपकी को सलाम, और उसके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे पोइट्री कहनी है।
0: पोइट्री के लिए नहीं, बात सुने आपने प्रोग्राम पूरा सुना है ना, पोइट्री हम 1:45 पे सुनेंगे, थोड़ा सा आप दोबारा कॉल कीजिएगा, मैं शामिल करूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। 0511-111-0101-0519-202-540 पे दोस्तों आप लोग कॉल करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: प्यारे भाई कैसे हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शफीक जी नारा मटोर।
0: शफीक साहब नारा मटोर, तो क्या हालत सुना, ठीक थे हो?
2: अल्लाह का शुक्र जी, ऐसे बड़े टाइम तो बाद जरा कॉल हो रही है, गल हो रही है।
0: सर तुसा गैप से, मैं तो दिल त्रै दिन नशना नफते।
2: सर तुसा है सा के पुराने कॉलर जरा तुसा थोड़ा जा
0: ब्रेक रखो,
2: नवे की मौका जो असा फिर तुसा ने गल पर अमल करना जरा।
0: माशाल्लाह तुसा माशाल्लाह बहुत चंगे बंदे हो ना, बाकी तो नहीं सुनने लेकिन तुसा सुनी बहुत मेहरबानी तुसा नी।
2: अच्छा बाकी यही खते जी गल 2026 गणा पिया।
0: अच्छा
2: इन 26 साल जो मेरे हाल जड़े शादी ते मिले से होई आ तक इस्तेमाल होने अभी हो सरकारी हो गया।
0: चलो जी अल्लाह ताला तुसा कितना देवे के तुसा डेली नवे कपड़े पाओ। अच्छा गल सुनो ना
2: जी, जी
0: एक लाइन ही अगर मैं पढ़ा तुसा पीछे पीछे पढ़सो तेज तेज।
2: सर अगर बने उस तो लेवल तक हुई तो हो सकना, तो जे ना हो सके तो फिर मुश्किल ही है
0: ना। दो लफ्ज़ हैं, टोटल चार हैं, एक मतलब फिर पढ़ने तुसा तेज तेज हैं।
2: अच्छा बोलो।
0: पहला लफ्ज़ पहले पूरी लाइन सुनी की नहीं है उस बाद फिर बोले। लफ्ज़ ये है कि कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, चार लफ्ज़ हैं। चलो ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ये वैसे ऐसे टंग ट्विस्टर है, मैं खुद ट्राई कर रहा था, मुझसे भी नहीं हो पाए थे। चलो यार देखते हैं कौन क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। हर माह जिसके प्यारी हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको, शाहिद अंसारी।
0: शाहिद अंसारी साहब, क्या हाल है आपका?
3: अल्लाह का शुक्र है, मगर मैं आज आपको कहना नहीं मानूंगा, आज आपको मेरी बात रखनी पड़ेगी, मेरा जाती नकवा आज आपको सुनना पड़ेगा।
0: अंसारी साहब, अंसारी साहब, डेढ़ मिनट अल्लाह ले, थ्री सेकंड भी नहीं। आज आपने इतनी सख्ती है, प्रोड्यूसर साहब सामने बैठे हैं, कहते हैं मैं तस्वीर भेजता हूँ।
3: आपको कसम है हदीका कहने के, देखो पिछले दफा मैंने आपको कहना मान लिया था, प्लीज आप आज मुझे मौका देंगे।
0: अंसारी साहब आप फिर जिद कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं।
3: अच्छा
0: मेरी बात
3: कहते तुम्हें

0: से तो कहते तुम्हें प्यार की बातें, फिर कर दिखाए तो आएगा तुमको यकीन, सागर से भी गहरा है मेरा प्यार हूँ नशी।
1: क्या बात है जी, प्यार हम नशीन। अंसारी साहब, बहुत माजद के साथ मैंने आपकी कॉल खुद ड्रॉप की है, मैं नहीं बताता ना कभी इस तरह कॉल ड्रॉप करता। देखिए आप लोग मतलब सीनियर लोग हैं, आप फिर कहते हैं कि यार इस तरह चीज़ें होती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी आपको इजाज़त दी है, आप ये मतलब एक आधा लाइन सुना के इंसान जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करता है, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया। बराए मेहरबानी इन चीज़ों को फॉलो किया करें ताकि आसानी हो मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। सब दोस्तों के प्रॉपर फॉर्मेट बताया जाता है, फिर उसके बावजूद जब सीनियर लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा।

0: नेक्स्ट कॉल की जानिब जाते हैं, देखते हैं जी कौन दोस्त हमारे साथ कहाँ से मौजूद है। 051-111-0101 अंसारी साहब, माजरा चाहूँगा आपसे ऑन एयर भी, लेकिन प्लीज़ फॉलो किया करें चीज़ों को। मैंने खुद कहा है कि 1:45 के बाद आके आप सुना सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद सुनना चाह रहा हूँ कि आज आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनाएं, लेकिन इस तरह ज़िद से आके और ऊपर से आप सुन भी नहीं रहे, आप वन साइडेड ना ये काम किया करें, थोड़ा सा ख्याल रखा करें। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या नहीं भाई, कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं
1: जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन।
0: मलक इरफान साहब मंडी बाउद्दीन से। इरफान साहब सेहत कैसी है?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। तो टॉपिक पे भाई ये बात करूंगा कि मतलब अच्छा पहनना चाहिए।
0: हाँ,
1: मतलब इस तरह पहनना चाहिए कि अगर आपके छोटे भाई हैं उन्होंने मतलब फटे हुए कपड़े पहने हो, आपने अच्छा पहना हो।
0: हाँ,
1: तो ऐसा तो फिर नहीं ना चलता।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अच्छा तब पहनना चाहिए, अपना भी ख्याल करें, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे हो मतलब वो चीजों के लिए रो रहे हो, आप अच्छा पहन के मतलब मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हो, ये भी अच्छा नहीं होता। मतलब अच्छा तब पहनना चाहिए जब दूसरों से मतलब बढ़कर आपके हिस्से में कुछ आए ना, तो अपना भी ख्याल करें, लेकिन सबसे पहले अगर कोई जो आप पे जिम्मेदारी है ना उसका पहले ख्याल करें, बाद में अपना ख्याल करें।
0: ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, लाइव कॉल के लिए हमने गेम भी रखी है, उस पे अब खेलना चाहेंगे, बताएंगे कुछ हमें?
1: कोशिश करूंगा।
0: चलें, जो पहली लाइन मैंने उनको बताई थी, सुनी थी आपने?
1: ये सुनी थी।
0: आप वो कह रहे ना जी कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, देखें कितने 5 सेकंड में हमने तेज से करना है।
1: कितनी दफा करना है?
0: 5 सेकंड में जितना कर सकते हैं।
1: कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू।
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सही कर गए। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। इरफान साहब ने ना अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई थी और बड़ा उन्होंने कमाल का सिलसिला किया है। और सलमान भाई मैं ज़रूर जी, आपके दोस्त एक हैं मरी में, जाहिद बलोच साहब उनका नाम है, वो इस वक्त बर्फ जो है वो माशाल्लाह आम अल्फाज में लोग कहते हैं कि आग सेक रहे हैं, मतलब आग की तपिश वो हासिल कर रहे हैं, आग के पास बैठे हैं, वो इस वक्त बर्फ सेक रहे हैं। और उनके लिए कोई ऐसा गाना लगा दें जो ठीक है जी, आग लगा दें। एक आधा जो इसका मिसरा मैं सुनाऊंगा, ये माशाल्लाह APP में सहाफ़ी हैं और एसोसिएट ऑफ पाकिस्तान, एक ये सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, आप तक दोस्तों जितनी भी न्यूज़ पहुँचती हैं वो APP के थ्रू, चूँकि गवर्नमेंट अप्रूव करती है चीज़ों को, सोशल मीडिया की चीज़ें अलग छोड़ के। तो ये ट्रैक कुछ बोल जो हैं ये उनकी नज़र हम करेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। ट्रैक का म्यूजिक बड़ा मजे का, जैद ब्लॉक साहब ये फिर आपके लिए सुनिएगा पहली लाइन।

0: उम्मीद करता हूँ जी जायद साहब ये आपको ट्रैक अच्छा लगा होगा। सलमान भाई ने ये सजेस्ट तो नहीं किया था, उन्होंने जैसे ये कहा था कि आपने एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करना है। आप हमेशा खुश रहें जी, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आप इंजॉय करने गए हैं तो इंजॉय करें। ये बस वैसे ही मेरी प्लेलिस्ट में ट्रैक मौजूद था तो मैंने कहा कि चले आप इस तरह का ट्रैक आपके लिए प्ले किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप मरी में बैठ के इस वक्त 101 की ट्रांसमिशन सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। 1:15 हो चुके हैं दोस्तों रात के, और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: प्यारे भाई, कैसे आप?
1: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक। अपना बहुत प्यारा सा नाम बताएं
1: जी। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली फ्रॉम पेशावर।
0: मोहम्मद अली फ्रॉम पेशावर
1: जी,
0: क्या करते हैं मेरे भाई? बड़े संजीदा आवाज से आप लग रहे हैं। डॉक्टर वगैरह तो नहीं है कहीं?
1: मेरे मोबाइलों का कारोबार है।
0: माशाल्लाह, मोबाइल का कारोबार है। ठीक है ठीक है। क्या
1: छोटा सा काम?
0: अल्लाह जी इसको बहुत बड़ा करेगा जी।
1: काम
0: कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, और अपना तो माशाल्लाह, फिर अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। प्यारे भाई टंग ट्विस्टर ट्राई करेंगे?
1: नहीं, आपके क्वेश्चन मैंने उस वक्त जो आपने एक से पूछे ना, तो उस वक्त मैं घबरा गया हूँ। कच्चा
0: कद्दू पक्का कद्दू,
1: वो मैं नहीं कह सकता, आगे नहीं कह सकता कुछ।
0: नहीं, कोई और आपके लिए कुछ और लेके आते ना। सर आप लोग मतलब दुनिया में कहां ऐसे लोग हैं, मतलब फिर तो सारे लोग आपसे मांगते होंगे। ये कुछ ना किया करे भाई, मांगा करे वापस।
1: यार ऐसी बात है, शुक्र है अल्लाह का, मैं आपको क्या बताऊँ, हमारी तबीयत ऐसी है ना शुरू से, मेरी 45 ईयर एज है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: मैंने दुनिया में बहुत कमीज देखी है, तो हम जिसके साथ हमने किया है ना, तो शुक्र है अल्लाह का उन्होंने हमारे साथ भी किया हुआ है।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तो इसलिए हमारा दिल जैसा है कि हम इनकार नहीं करते।
0: बहुत छोटी
1: चीज। दूसरी चीज ये है कि उसने एक और बात भी आपसे कही थी कि वो खुद ही दे देते हैं, तो हमें भी अल्लाह का शुक्र है खुद ही दे देते हैं।
0: बहुत अच्छी
1: आदत, कैसे नहीं है,
0: ठीक हो गया। बहुत
1: अगर हम किसी से मांग लेते हैं जरूरत, इंसान एक हाल में तो अल्लाह की जात है, इंसान तो एक हाल
0: कोई शक नहीं जिसमें,
1: कोई हम किसी से मांग लेते हैं तो वो भी हमसे इनकार नहीं करते,
0: कोई शक नहीं।
1: अगर हम और शुक्र है अल्लाह का, जिसे मैं जितना टाइम देता हूँ ना उसे, मैं टाइम से पहले उसे
0: वापस दे देते,
1: तो दो हफ्ते का टाइम दिया है तो मैं एक हफ्ते में उसे जी होते हैं।
0: बहुत अच्छी आदत, बहुत
1: शुक्र है अल्लाह का, मेरी ऐसी आदत ही नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया दोस्त। ख्याल रखिए
1: यार, के लिए कि अपनी तबीयत अपना शो है, वो क्या करें, हमारे दोस्त है ऐसे थे, एक था मेरा दोस्त, उससे दे रहे थे, फिर उससे मांगो नहीं, वो फिर मांगने पे वो से उठता था।
0: क्या बात है,
1: वो अब फौत भी हो गया, अल्लाह बख्शे,
0: अल्लाह ताला उनको जी उनकी मंजिल आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।
1: बहुत
0: थैंक यू सो मच दोस्तों। 1:17 हो चुके हैं, आपका और मेरा साथ ठीक शब के 2 बजे तक रहेगा। 1:45 के बाद आप अपनी खूबसूरत आवाज में पोइट्री सुना सकते हैं। मुझे ना कहिएगा पोइट्री के मामले में, आपका भाई बहुत मासूम है, मुझे अच्छी बहुत लगती है, सुनता हूँ पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन जिस तरह अल्फाज की अदायगी हमारे सजाद भाई करते हैं सीनियर, जो हमारे नासिर महमूद खान, बहुत प्यारी आवाज उनके और उनका लहजा। सैयद अली हसनैन सीनियर हमारे प्रेजेंटर्स गुंचा शौक लाहौर से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स होते हैं, कराची के बहुत ज़बरदस्त आर्ज हैं, कराची की तो उर्दू भी माशाल्लाह बहुत खालिस है। तो कराची से कॉल अभी तक नहीं आई, देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: नज़ीर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप खैरियत से?
0: अल्लाह पाक का बहुत करम है नज़ीर भाई। टंग ट्विस्टर ट्राई करेंगे आज कुछ नया
1: जी, ये जो पहले कह चुके हैं ये तो मैं कह दूंगा, लेकिन नया पता नहीं कह सकूंगा या नहीं।
0: नहीं चले नया ट्राई करते हैं, वो तो हो गया, वो चुके थोड़ी बहुत ना प्रैक्टिस हो गई है
1: जी।
0: क्या कहते हैं, आप तक पहुंचाया जाए
1: जी, बताइए कोशिश करते हैं।
0: बहुत इजी वर्ड है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, मतलब इजी है, दोबारा सुन लें, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला,
1: जिस ताले की चाबी उस ताले उस चाबी का ताला।
0: हाँ, ये
1: जिस चाबी का ताला
0: एक दफा लाइन सुन ले, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला,
1: जिस ताले की चाबी चाबी का ताला।
0: देखिए आपने तेज 5 सेकंड आपके पास, तेजी से कहना आपने।
1: नहीं मैं नहीं कह सकूं।
0: अच्छा मैं क्या, ठीक है। चलो नजीर साहब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, देखते हैं कुछ और लोग कह पाते हैं या नहीं कहते, ठीक है
1: जी जी,
0: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोल दियो तुसी, नाराज हो साडे नाल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: प्यारे भाई।
1: नंबर भाई हाफिज अब्बासी
0: बारकों से।
1: बारकों से
0: सर जी, क्या हाल है, मौसम ठीक है बारकों का?
1: आज मैं आया हूँ इधर मैरी एक्सप्रेस वे पे, जगह दोस्त के यहाँ।
0: अच्छा अच्छा, आप मतलब थोड़ा और ऊपर चले गए ठंडी जगह पे।
1: हाँ पार्टी 6 दिन से बहुत ठंडा है।
0: हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है जी, इस्लामाबाद में मौसम तगड़ा हो गया। अच्छा टंग ट्विस्टर ट्राई करेंगे? मैं अभी जो थोड़ी देर पहले नजीर साहब को बता रहा था वो आपने ही करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या सूरत हाल है।
1: बताना पड़ेगा क्योंकि मैं कॉल पर ना
0: लें। नहीं नहीं मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि आज आपके लिए क्या है। आपके लिए ये है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। 5 सेकंड आपने, 5 से 6 सेकंड है आगे भाई, तेजी से आपने बोलना है। चलें जी लेट्स स्टार्ट।
1: इस ताले की चाबी उस ताले के नहीं हो सके।
0: नहीं हो सके जी, आप पहली तुसी पहली लाइन ही पूरी नहीं की थी। अल्लाह लियो मरी जाके, ज्यादा ठंड तो नहीं लगी थानू?
1: इस ताले की चाबी उस ताले का
0: बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है सर। मैं आता हूँ, मैं ये 1:30 बजे ना इंशाल्लाह 1:30 पे मैं मैच के वाले से डिटेल बताता हूँ, ठीक है। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। 0511111001 पर दोस्तों आपकी लाइव कॉल में प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। 1:21 हो चुके हैं जी, आपका और हमारा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। 1:45 ऑनवर्ड अगर आपने, आप जिसकी पहले भी कॉल मिल चुकी है दोबारा शायरी सुनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कितने चले गए सुने हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम प्यारे भाई, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह यानी साहब, आप खैरियत से हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है। प्यारा सा नाम बता दें अपना।
1: असद मेरा नाम है, फौज से ताल्लुक है, लाहौर में ड्यूटी कर रहा हूँ और साहब का प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
1: दुआ सलाम आपकी पूरी टीम को।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: नफस पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे, लेकिन नफस तो बहुत आसान है लेकिन बोलने में मुश्किल है। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू
0: पक्का। नहीं नहीं मिक्स हो गया, मिक्स हो गया बीच में, कद्दू क्या तो मिक्स हो गया। खैर मैंने आपसे ये पूछना भी नहीं था, कोई और पूछना था। बहरहाल आपने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है
1: सर जी। वो बाकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा था, मैं कहा आपका टाइम जाया नहीं करूं, सीधा कच्चा कद्दू पक्का कद्दू पे आ गया।
0: सर आप माशाल्लाह शहजादे हैं हमारे, शेर हैं आप, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, ठीक है
1: ठीक है सर।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। और 1:23 हो चुके हैं दोस्तों, टेस्ट मैच के वाले से थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज सीरीज मेरे अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वेरी फर्स्ट टाइम जब सर अब्दुल वहीद शेख साहब ने मुझे माइक्रोफोन पे मौका दिया था स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन में, तो वेस्ट इंडीज की सीरीज थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत टफ टाइम था, मतलब जब उन्होंने कहा कि अब बोलें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब अल्फाज गुम हो गए थे, जो कपकपी जो तारी होती है वो सिनेरियो था माइक्रोफोन पे बोलना। एक वक्त था मुझे भी बहुत आसान लगता था शीशे के उस पार बैठ के, क्या जिस बहुत आसानी से बोलते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करता रहता था जब बैक टू बैक म्यूज़िक चलता था, स्टूडियो में कोई नहीं होता था तो एक रैंडम वैसे ही मॉक प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह बोलता था। लेकिन जब माइक ऑन हुआ आप यकीन जानिए कि मैं उस चेयर पे मतलब बड़ी मुश्किल से वो बहुत मुश्किल वक्त गुजरा था, इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये हर किसी के साथ होता है ज़िंदगी में, अपनी अपनी फील। हमारी एक आरजे हैं आरजे रबैका अब्दुल, माशाल्लाह बहुत ग्रूम किया उन्होंने, बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करती हैं गवर्नमेंट लेवल के, चाइना जाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काम किया। उनका भी फर्स्ट डे मुझे याद है, मतलब बड़ा टफ डे था उनका। बहुत ज़्यादा ऐसे आरजेज हैं जो कि आज माशाल्लाह अपनी बहुत ज़बरदस्त पोस्ट पे मौजूद हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन जो फर्स्ट डे था उनका, तो ये बड़ा मुश्किल सिनेरियो जो होता है। तो ये वेस्ट इंडीज़ सीरीज से मुझे याद आया, 148 रन हो चुके हैं, 3 विकेट्स गिर चुके हैं जी वेस्ट इंडीज़ की, और इस वक्त खुर्रम शहजाद बॉलिंग कर रहे हैं। एक दफ़ा शॉट जल्दी जल्दी मैं ना ये स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर दूँ, चूँकि प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और चूँकि जो खुद क्रिकेट से मोहब्बत करता है या स्पोर्ट्स के हवाले से, तो फिर थोड़ा जाना और उद्देश्य भी औखा हो जाता है टॉपिक चेंज करना। तो दोस्तों यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 147 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। पाकिस्तान की जानब से मोहम्मद अब्बास ने 2 विकेट्स हासिल किए और आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की। आज जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11, उसमें अजान अवैस हैं, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास मौजूद हैं। और टॉस के हवाले से दोस्तों आपको बताते चलें कि वेस्ट इंडीज़ ने टॉस किया, जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 147 पर उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रैंडम ड्रॉप हो रही है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: बात कर रही हूँ,
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बड़े से बात आपने कॉल की।
2: बस मैं कहती चले दूसरों को नई कॉलेज को मौका
0: नहीं आंदे भी नहीं ना, फिर मसला है
2: नहीं आंदे भी नहीं, साडा भी पता कटे
0: नहीं नहीं आप लोग कॉल जरूर किया करें। और लाहौर का मौसम कैसे, बारिश वगैरह है, मॉनसून वाला सिलसिला?
2: हाँ, बारिश अभी तो नहीं, अभी तो रुकी हुई है, लेकिन 2-3 दिन से डेली हो रही है बारिश, सुबह तो सारा दिन होती रही है ना।
0: अच्छा ठीक है,
2: खासी बारिश होती रही है, जबरदस्त मौसम है।
0: चलो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ट्राई करेंगे टंग ट्विस्टर?
2: हाँ ट्राई तो करनी चाहिए ना।
0: चले आपने भी वो ताले चाबी वाला करना है फिर। मैं लाइन आपको बता देता हूँ या सुनी भी आपने? चलो मैं बता देता हूँ, इजी है। चलो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ट्राई करेंगे टंग ट्विस्टर?
2: हाँ ट्राई तो करनी चाहिए ना।
0: चले आपने भी वो ताले चाबी वाला करना है फिर।

0: अभी का ताना, ये पूरी टोटल लाइन है, 5 से 7 सेकेंड आपके पास, जितना तेजी से कर सकते हैं आपने करना है, ठीक है? मैं जब लेट्स गो कहूंगा ना, 1 2 3 गो, तब आपने स्टार्ट कर देना।
1: ठीक
0: लाइन याद होगी?
1: है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: यस, 1 2 3 गो।
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: हो गया हो गया हो गया, आपने जी आपने चैलेंज जो है वो कबूल किया और एक्सेप्ट भी किया, और मार्शल आपने बड़ा अच्छा कर भी किया। अच्छा आ गए हो तुसी।
1: हाँ, स्पीड पे मैंने वो पैर जो था ना।
0: हाँ, तो इसका मतलब है वो जैसे सुनील मान साहब ने कहा था कि मेरा फुटबॉल साइन किया वो आपको मिलेगा, तो आप 1-1 की टीम की जानिब से आपको खाना ऑफर करते हैं, सामान आना पड़ेगा आपको, ठीक है?
1: आना कोई नहीं मैं।
0: इसे वास्ते ऐसी वो गल कही है ना कि मतलब जड़ी हो ही ना सके। ये ऑप्शन भी ठीक है।
1: और जबरदस्ती ये जो गेम और बीच में इस तरह की चीज ड्रॉप कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच।
1: फिर हम कॉल करने पे, फिर नए कॉलर भी मजबूर होंगे, आए ना नए कॉलर भी आया करें, पहले तो शुरू में आया करें, फिर बाद में हम आ जाया करेंगे, फिर नहीं हम किसी को आने देंगे।
0: नहीं नहीं, ऐसे कोई मसला है, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब ऐड होती है चीजें, लेकिन आपने देखा होगा आज भी कुछ हमारे सीनियर कॉलर हैं वो सुनते नहीं ने, फिर उन्होंने तो की हल करिए।
1: शायद भाई प्लीज, ये हाथ जुड़े हुए हैं, आपने शुरू की सिर्फ 2 लाइनें सुनाया करनी है।
0: हाँ।
1: उनको रिपीट नहीं करना,
0: रिपीट
1: दो सुना के और बस कट हो जाना है, क्योंकि बाकी भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे हम आपके कॉल के इंतजार कर रहे हैं, वैसे शायद कोई हमारा भी करो। तो
0: बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया अनिला।
1: तो रौनक होती है, अच्छा लगता है सैयद भाई और शायद भाई के लिए, और बाकी जितने मेरे और भाई आते हैं जो मुझे याद रखते हैं, उन सब के लिए बहुत सी दुआएं करता हूं सर, और आपके लिए भी जबरदस्त शो।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू,
0: अल्लाह हाफिज़ जी। 1:29 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, हफ्ते में 3 दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मुलाकात रहती है, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में इसको सेगमेंटाइज किया जाए, चूँकि अब दोबारा जो है वो रातें जो हैं वो लेंथी होती जा रही हैं, और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। मैं कल भी इसी वक्त, एक तो चाय पीने की ऐसी आदत हो चुकी है, हालांकि अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस पर गिला शिकवा भी करते हैं कि आप नहीं चाय पिया करें, रात जो ये 1:30-2 बजे के करीब अगर चाय ना पी जाए तो बिल्कुल नींद वाला मामला ही। एक तो ये कि इंसान ना साइकोलॉजिकल अपने आप को ना कमज़ोर समझने शुरू कर देता है, ये एग्जाम्पल्स जब जो कोई भी स्पीकर जो है आपको जब बता रहा होता है ना, तो आप ये दिल में सोच लें कि ये मसला इनू भी है, ता ही ये सानू दस रहा है। मतलब अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार मैं रात को नींद नहीं आती, चाय ना अगर पीऊँ, तो ये ना मेरा एक मेंटल स्टेट जो साइकोलॉजिकल मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जान इसके बिना ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए, और इस तरह होता नहीं है कि जब आप अपने आप को एक उस क्राइटेरिया में सेट कर लें, या अपने आप के लिए वो एक चीज़ दिमाग को बता दें कि भाई जान ये ही करूँगा तो ये होगा। जैसे हम बाज़ूकात बहुत दफ़ा इस तरह की सोच लेते हैं ना कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, तो वो वाकई आप नहीं कर सकते। तो हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, अल्लाह उनको हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी दे, वो कहते थे कि जो चीज़ आप सोच सकते हैं ना क्यारी साहब, वो ओवरऑल वैसे पूरी क्लास को वो करते थे, वो कहते थे जो चीज़ आप जहनों में सोच सकते हैं वो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीक़ाकार कैसे वज़ा करना है, उसके लिए रोड मैप आपने क्या अख्तियार करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो चीज़ आपने जहन में सोची हुई है वो किया करें, चाय से मना ना करना। अस्सलाम वालेकुम जी, ए जड़ी कॉल है ना ये सानू बहुत तंग कर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, चलें जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? आपकी कॉल मिल चुकी है जी, हेलो जी, आपकी कॉल मिल चुकी है जी, कितने चलोगी जी तुसी? अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है, फिर एक ट्रैक भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, काफी देर से हमने म्यूजिक भी प्लेन किया। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ मिल गई। अस्सलाम वालेकुम,

0: ये वैसे सही निजाम है। अस्सलाम वालेकुम
1: जी, बिस्मिल्लाह करा ते वालेकुम सलाम कवां जी की जाए।
0: और तुहाडा की हाल है सरकार?
1: बस दुआवा ताडी है माशाल्लाह। देख लो मैं ना अपना और रेलवे स्टेशन के पास हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: हाय हाय, रेलवे स्टेशन सर, मेरी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि रेल का सफर किया जाए, और रेलवे स्टेशन बड़ा फैसिनेट करता। अच्छा
1: आप आए ना, कहीं किसी दिन आपको हम टिकट चने खिलाए ना, आपको तो पहले भी
0: है। मेरा उठे आने का किराया कौन देगा? तो पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया।
1: ओ किराया रेल गाड़ी तो वैसे ही पै जाएगा, ऐसे जो उतरोगे उदो किराया देगा।
0: अच्छा जो उठे लवांगे आगे तुसी, अगर वो ही ना तो फिर मैं की करांगा?
1: नहीं मैं आपसे पहुंच गया हूं पहले।
0: ठीक है। अच्छा सर जी, एक लाइन है आपके लिए, आई विश के आप इसको कहें।
1: हां जी,
0: लाइन आपके लिए ये है, गोल गप्पा गरम गप्पा। वैसे इजी है इनके लिए।
1: हाँ जी है, तो इजी है, लेकिन ठीक है, गोल गप्पा
0: गरम गप्पा
1: गरम गप्पा।
0: मैं गप्पा, गरम नहीं बात सुने, बात सुने, जब मैं 1 2 3 गो कहूंगा ना, तब आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
1: तो आपको मेरी जो जुबान से चढ़ा हुआ है वो ना सुना?
0: नहीं नहीं, इस तरह तो देखिए तो ना इंसाफी है ना।
1: फिर अड़ जाऊंगा, नहीं आएगा।
0: नहीं नहीं, आप अड़ जाएंगे तो इतने केड़ा सी कोई इनाम देना है या तुझी सानू कुछ देना है? आपने यही लाइन कहनी तो मैंने आपसे कही है, 1 2 3 आहो गो।
1: गोल गप्पा गरम गप्पा, गोल गप्पा गरम गप्पा, गोल गप्पा गरम गप्पा। देखे ना अड़ जाना नहीं हो, अड़ जाना बता। लेकिन मेनू ना जेडे बड़ा, मेरे को भी जेडे हुनर ने वो भी सुन लिया करो।
0: नहीं नहीं, तुसी एक शामिल करते हैं। मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद क्या नहीं, और आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम जनाब, कैनी साहब क्या हाल है? ठीक है
0: जी, मैं ठीक। सरकार रेडियो बंद कर दियो मेहरबानी होगी। हाँ जी
1: सर, की हाल चाल है?
0: सर ठीक है, अल्लाह का बहुत एहसान, मैं बिल्कुल ठीक। सोना का नाम दसो सब तो पहले।
1: मेरा नाम है असद अली फ्रॉम लाहौर।
0: असद अली फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया जी, लाहौर वालों का आज काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन हुई है। असद भाई एक
1: पहली मरतबा कॉल किया।
0: असद भाई जजाक अल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोड्यूसर साहब ये एक नई कॉलर आ गया, आप मुझे गिला शिकवा करते हैं ना। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहली दफा कॉल की, मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ आपका। एक लाइन आपको हम देंगे, वो आप पढ़ेंगे।
1: जी जी,
0: आपने पहले सुनी हुई है जो 2-3 मैंने करवाई है?
1: ये भी सुनिए, सरदार भाई से आपने बोली। अच्छा अच्छा, गरम गप्पा
0: नहीं, वो गरम ना छाड़ दे, ठंड होगी बारिश होगी। तुसी पता क्यों सुनाना है? जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, की बोल रहा है? ठीक है,
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: यस,
1: एक मिनट मुझे दोबारा रिपीट कर लेने दे। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: ताला तो सरकार में 1 2 3 कहना है तो नाल ही तुसी शुरू हो जाना। ठीक है,
1: ठीक हो गए ना
0: जी। बिस्मिल्लाह करा, 1 2 3 गो।
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। ठीक हो गया,
0: ठीक हो गया, कमाल सर, तुसी तो कमाल ही कर देता माशाल्लाह, तुसी तो माशाल्लाह।
1: मुझे ना आपका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा सर?
1: ओ अल्लाह वाले केरे पासे टर पे हो,
0: केरे पासे टर पे हो। वैसे गलत सही है, हर बंदा इधर उधर ही जा रहा
1: है। बात है,
0: तो आपका बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है,
1: अल्लाह
0: हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट कॉल को प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ कहां से मौजूद हैं। और अच्छा लगता है जब नए दोस्त ऐड होते हैं। और गले नोज क्यों हो गया? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
2: अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम सलाम। कॉल आपकी पहले भी 2-3 दफा मिल चुकी है, आप मेरी आवाज आ रही है आपको?
2: जी जी आ रही आवाज, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक, अपना नाम बता दें सबसे पहले।
2: आयशा बात कर रही हूँ।
0: आयशा किस जगह से कॉल किया आपने?
2: मैंने भरकोर से
0: भरकोर से कॉल किया, ठीक हो गया। आयशा टंग ट्विस्टर एक आपको बताएंगे, ट्राई करेंगे आप?
2: जी जी आप इजी बताएं तो करेंगे।
0: हाँ इजी है, बहुत इजी है, मैं खुद भी ट्राई किए।
2: जी बताएं।
0: आपका टंग ट्विस्टर ये है, टिक टिक करती तितली थक गई। ये आपने लिखना नहीं है गेम में, लिखेंगे तो आसानी। दोबारा सुन ले। टिक टिक करती तितली थक गई, ठीक है? आगे लाइन जुबान पे।
2: टिक टिक करती तितली
0: थक गई, मतलब उठ गई, ठीक है?
2: टिक करती तितली थक गई।
0: हाँ एक मिनट, अब जब मैं 1 2 3 गो बोलूंगा ना तब आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? 1 2 3 गो।
2: टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक करती तितली थक गई, टिक टिक।
0: वेल डन वेल डन आयशा, कर लिया आपने, कर लिया आपने, बड़ा जबरदस्त किया। ये लिखी तो नहीं थी लाइन कहीं आपने?
2: नहीं नहीं मैंने नहीं लिखी थी।
0: आप माशाल्लाह बहुत लाइक है, बहुत शुक्रिया।
2: फर्स्ट टाइम कॉल किया, अच्छा लगा आपका शो सुनके।
0: चलिए थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर साहब एक और बंदा हो गया, आप जरूर कॉल किया करें, नए दोस्त ऐड होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है?
2: जी जी इंशाल्लाह। दुशान भाई के साथ सुना था आपको तो मैंने कहा चलिए आज सुन के कॉल करें।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, ख्याल रखिएगा, ठीक है?
2: ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़ जी। 1:38 हो चुके हैं दोस्तों, ये 38 नहीं होता, ये 38 होता है, तो ये आप ना हल्का फुल्का साथ साथ नोट कर लिया करें। 29 और 29 दोनों ही ठीक है, लेकिन जो सही करेक्ट वर्ड है वो 29 है, और ये इस तरह 38 है, इसको 38 नहीं बोलते। 2:30, 3:30, 4:30 ये कोई टाइम चीज़ नहीं है। 3:30, 4:30, 5:30 ये एक्चुअली जो है वो टाइम है। मैं घर में एक दफ़ा टाइम पूछा, जो मेरा सबसे छोटा बेटा माशाल्लाह 5 साल उसकी एज हो चुकी है, मैंने कहा बेटा टाइम क्यों, वो मुझे बताता है कि 9 2 dot और 5 0, मतलब इस तरह उसने नाम बताया, तो मुझे बड़ा टाइम बताया, तो मुझे बड़ा वो हुआ। देखिए बच्चे ने डॉट मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं ना चीज़ें आजकल के, चूँकि चैट जीपीटी का दौर है, टेलीफोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस है बच्चों के पास, और कुछ दिन ना मैंने एनुअल्स ली, ये एक ना अपनी ऑब्जर्वेशन में हमेशा शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से, वो इसलिए कि यही कुछ है जी ज़िंदगी सेम ही है, हर किसी के ना जो आजमाइशें मुख्तलिफ हैं, हर बंदे की ज़िंदगी की एक अपनी कहानी है, आप जिससे पूछेंगे वो उसकी एक अपनी एक स्टोरी होगी और अपनी एक दुनिया होगी। ऑब्वियसली आप अपने इर्द गिर्द जो है वो एक घर में एक ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मुकाम रखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ये कि छुट्टियाँ ली बात की और निकल जाएगी, तो मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ था कि कहीं पे भी बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं देनी चाहिए, लेकिन यकीन जाने आखिर आके हल यही मिला है कि यार अगर घर में सुकून करना है ना आप लोगों ने, तो उनको दें फ़ोन, ताकि ना कम से कम को 15-20 मिनट बैठ के उस जो कार्टून वगैरह वो देखें। हाँ नज़र ज़रूर रखें बच्चों पर, उल्टी सीधी गेम्स ना खेलें, वो गेम्स खेलते हैं, हर किसी चीज़ को अलाउ करते हैं, आपकी जो प्राइवेसी होती है, आपके फ़ोटोज़ होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो इधर उधर जाने का खर्चा डर रहता है, नज़र ज़रूर रखें, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस अलावा कोई हल नहीं है, फ़ोन देना ही पैंदा है अगर तुसी ना किसी भी किस्म का अपने सुकून करना है। तो एक मैडम की आवाज़ के प्रोग्राम में शामिल करते हैं दोस्तों, वापस आते हैं फिर आपसे करेंगे ढेर सारी गपशप। ये ट्रैक मैंने पिछले दिनों सुना था, दिल को बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोशिश होती है जो मुझे दिल को चीज़ अच्छी लगे वो मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। क्वालिटी इसकी थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैडम नूरजान की आवाज़, इसके लिरिक्स और इसकी फील जो है वो बहुत कमाल की है, ये आपके लिए है।

0: चलें दोस्तों, आज का जो हमारा सेगमेंट था ये टंग ट्विस्टर का, इसकी लास्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फिर उसके बाद आपसे ना अच्छी अच्छी शायरी सुनेंगे और मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, उम्मीद करता हूँ कि मैडम नूरजान की आवाज़ में जो ट्रैक हमने प्रोग्राम में शामिल किया था ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये इस सेगमेंट की लास्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: यानी भाई क्या हाल है? अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: हाशमी साहब लाहौर से मौजूद हैं। सर कैसी तबीयत आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब शायरी का शो शुरू हो गया?
0: सर दो मिनट वैसे अभी हैं, आप शायरी सुनाना चाहते हैं?
1: हाँ हाँ,
0: आप वो कच्चा कद्दू पक्का कद्दू वो तुम ट्राई नहीं करोगे? अच्छा दो चार शेयर, मुझे एक सेकंड मतलब दीजिएगा ताकि ना हम इस सेगमेंट में अनाउंस कर दूं, आप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 1:45 1:45 से ऑनवर्ड जो मैंने आपसे कहा था कि हम शायरी सुनेंगे, मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होंगी, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, आपके पास बहुत अच्छा कलाम है, तो आप ज़रूर आके मुझे सुनाएं। शॉर्ट लेकर आएंगे तो ज़्यादा दोस्तों को मौका मिलेगा। सबसे पहले लाहौर रिवाज गार्डन से हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं हमें क्या सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सुनाएं।
1: वालेकुम अस्सलाम। अब आज साबिश के दो तीन शेर।
0: जी जी।
1: हंसने नहीं देता कभी, रोने नहीं देता ये दिल, तो कोई काम भी होने नहीं देता। तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। मैं आप उठाता हूँ शब रोज की जिल्लत, ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता। एक शेर और। वो कौन है जिससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता।
0: होने नहीं देता, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक, अल्लाह हाफिज़ जी। दोस्तों आप लोग भी मज़ीद कॉल कर सकते हैं जी। इसका फॉर्मेट ये है कि शॉर्ट जो है वो आपने पोइट्री सुनानी है, अपने नाम आके बताना है, शहर का नाम बताना है, और कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी जो है वो कॉल लेंथी ना करूँ कि मतलब की हाल है, मौसम किस तरह का, नहीं जी, ना सिद्धा तुम्हें दसना है और उसके बाद आपने कि ना अपनी शायरी सुनानी। नेक्स्ट कॉल। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी।
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: कैसे भाई जान?
2: ठीक हूँ। साहब साजिद जा रहा हूँ लाहौर से।
0: लाहौर से सर, बहुत शुक्रिया। साजिद बात कर रहे हैं।
2: हाँ हाँ, तो आपने एकदम टॉपिक की चेंज कर दिया एक आधे घंटे में।
0: सर आधे घंटे में नहीं, ये एक घंटा तो मैंने बताया हुआ था, मतलब आप वो टंग ट्विस्टर सुनाना चाह रहे थे।
2: तो पहले वाले टॉपिक जो था उसके लिए तैयारी थी, तो ठीक है। ये तो बच्चों का वो गेम होता है, जैसे वो स्कूलों में टीचर जो है खिलाते हैं
0: सर, क्या
2: तो ये भी बच्चे भी आपको सुनते हैं सारी उम्र के। अभी हमीद गोल साहब आने थे, वो इसी वजह से शायद वो कॉल भी ना करें। तो सुनीजा कर जो है ना वो तो फिर टॉपिक जो होता है ना उसको देख कर।
0: मैंने सर मैंने आप उसको संजीदा कर दिया, आप शायरी सुना सकते हैं, मतलब मैं वो गेम वाला हमने क्लोज कर दिया, आप कोई कुछ सुनाना चाहते
2: हैं? एक तो मैंने पैगाम वकीम भाई लाहौर में छोड़ रहे हैं आपको, मैं मुबारकबाद देता हूँ। उसने 2 से 4 बजे का प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा उसका प्रोग्राम।
0: सर वसीम भाई माशाल्लाह 1-1 लाहौर की बहुत खूबसूरत आवाज है।
2: वो सजाद भाई करते थे ना
0: जी जी जी जी,
2: तो उसकी कमी काफी दिनों से महसूस हो रही थी, वसीम भाई ने वो कमी हमारी पूरी कर दी।
0: सर क्या बात है, क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं।
2: वसीम भाई के लिए
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
2: और तरक्की दे और आमीन, के आमीन,
0: आमीन,
2: और
0: आमीन।
2: पहले तो मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने अचानक क्यों किया, 2 बजे के बाद तो वसीम भाई बोल रहे थे।
0: सर बस
2: लाहौर की जो टेलीकम्युनिकेशन है ये तो ऐसे भी बारिश होती है ना ये ब्रेक हो जाती है इनकी लाइन।
0: सर बस ये ओवरऑल ये सिलसिला कुछ इस किस्म का, बहरहाल इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है,
2: तो मैं कॉल नहीं कर सका, तो मैं शरी आपको सुनाता अपना थोड़ी सी, ठीक है
0: सुनाए।
2: इसके बाद आपसे जायजा होगा अहमद सराज साहब भी। आपके तरजीजे वफा का नहीं कहा जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा सा जाना।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर अपना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी, बड़ा जबरदस्त इन्होंने शेर सुनाया जी। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं नीला बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: वालेकुम सलाम।
3: शायरी सुना सकती हूँ?
0: जी जी, आपको अगेन वेलकम करते हैं जी, स्टार्ट करें।
3: थैंक यू सो मच जी। तुम नजर से नजर मिलाते तो, तुम नजर से नजर मिलाते तो, हंसते ना मुस्कुराते तो, चांदनी रात सिसकियां भरती, चांदनी रात सिसकियां भरती, तुम जरा अपनी छत पे आते तो, और इख्तलाफात तो होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते तो, दोस्ती में ना नहीं चलती, खुद ना आते कभी बुलाते तो, और आ भी जाओ कि हम बुलाते हैं, आ भी जाओ कि हम बुलाते हैं, तुम बुलाते जो हम ना आते तो, माना तुमने बहुत कमाया है, लेकिन इसमें से कुछ बचाते तो
0: क्या बात है, क्या बात है, ये जो अंदाज है ना आपका, मतलब अल्फाज के साथ खेलने के, देखिए शायरी तो है, यही कमाल है, जिस तरह अभी आपने ये सारी जो लाइंस पढ़ी हैं, इसके अल्फाज का जो एंड है, उतार चढ़ाव, कमाल का। अनिला बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
3: हाँ, रब को कायम रखना पड़ता है और मजा तभी आता है ना, इसको बहुत अच्छे से
0: इंशाल्लाह ये
3: मैंने सब आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है साजिद भाई आए और
0: हाँ मैंने
3: सलमान एंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त भाई
0: सलमान भाई तो किंग है हमारे, वो एक मैसेज कह रहे हैं सारा नेट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है,
3: उनके लिए बहुत चीज है।
0: बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना,
3: उनको बुलाए ना शो करने के लिए भी, आए ना, वो आते ही है, सज्जाद भी नहीं आ रहे हैं, इतना जबरदस्त शो करते
0: आएंगे,
3: थे वो भी।
0: आएंगे, मैं सलमान भाई से तो ये शो के बाद कॉल करता हूँ, पहले बातचीत हो रही थी,
3: आए ना उनको बुलाए अब, और बाकी सबके लिए बहुत चीज है, शायद भाई नाराज नहीं होना, आप बड़े अच्छे कॉलर है हमारे, आया करें बस जरा मोहब्बत से।
0: हाँ ठीक है,
3: और साझेदार आए बड़ा अच्छा लगा, जो भी आते हैं, और एरा माओ शायरी सुनाओ की ठीक है,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी दोस्तों, कौन हमें कहाँ से कॉल। अच्छा दोस्तों, ये चूंकि आज सेकंड प्रोग्राम है ना, आप देखें कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो टाइम लगता है चीज़ों को ट्रैक पे आने के लिए, मैं टेम्परा वाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की भी और बर्दाश्त करने की भी ना काफ़ी अल्लाह ताला ने ये जो है वो दिया हुआ जिगरा जो है, तो मुझे ये अंदाज़ा था कि हमें 8 से 10 प्रोग्राम्स लगेंगे, कि लोगों को ये आखिरी 10 मिनट का बताने का कि हम 45 मिनट से ऑनवर्ड 2 से 3 भी अच्छे अगर आप कलाम सुन लेते हैं, जैसे अनिला ने पढ़ा इससे पहले कॉलर थे उन्होंने, तो आप यकीन जानिए जो मेरा मकसद भी पूरा होगा, मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और ये हमारा अच्छा सा ना एक इंशाल्लाह कलर ऐड हो जाएगा। 1 से 2 कॉल्स मजीद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, चूँकि 1:50 हो चुके हैं स्टूडियो की इस वक्त घड़ी पे। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम, ये काफी शोर आता है इस कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नजीर क्यानी बोल रहा हूं।
0: नजीर साहब अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं, सर क्या सुनाएंगे?
4: बहुत शुक्रिया जी, और बहुत बेहतरीन अंदाज नीला बहन का, मैंने कहा कि इसी तरह शायरी पड़ी इसी तरह जाती
0: है, मुझे खुद बहुत मजा आया सीरियसली, बहुत शुक्रिया। आप कुछ सुनाएंगे?
4: जी जी
0: सुनाए सर।
4: उम्रें लग जाती हैं प्यारे अपना आप बताने में, उम्रें लग जाती हैं प्यारे अपना आप बताने में, तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने में,
0: मुझको छोड़ के जाने में, क्या बात
4: है, गजल बड़ी लंबी है लेकिन चले बस इसी
0: पर। बहुत शुक्रिया, ये जो आपने क्लोजिंग एंड दी कमाल की, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल दोस्तों, देखते हैं कि जी हमारी किस्मत क्या होती है, हमारी किन दोस्तों से बात हो सकती है। लास्ट कॉल 051-111-0001। बहुत शुक्रिया आपका, कैसे आप? हमीद गुल साहब रावलपिंडी से। आपके थोड़ी देर पहले भी किसी ने कहा था कि वो सीरियस टॉपिक पे कॉल करते हैं, तो सर बहुत शुक्रिया अगर आपने इस काबिल समझा मुझे।
4: ऐसी बात नहीं है, आप काबिल एहतराम है
0: सर, बहुत शुक्रिया।
4: हमसे वो इस उम्र में आप टंग ट्विस्टर कराएंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना
0: सर, माजे चाहता हूँ, मैं वही देख के मैंने जिस चीज से मुनासिब लगे उसको मैंने कहा
4: है। नहीं, अच्छा प्रोग्राम है आपका, ठीक है, वो यंगस्टर भी सुनते हैं,
0: बहुत शुक्रिया,
4: तो अच्छी बात है, आप अच्छा लेके चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: क्या सुनाएंगे सर?
4: मैं अपनी एक नज़्म सुनाता हूँ।
0: जी जी सुनाए सर।
4: उसको अनवान है, वो पहला कागज,
0: वो पहला कागज,
4: हाँ शायद आपने भी किसी को लिखा हो
0: सर, बहुत लिखे थे।
4: देखिए संगीतों के, याद है तुमको वो पहला कागज, बल्कि
2: आपकी नजर कर रहता हूँ तो याद है तुमको वो पहला कागज जिस पर तुमने कभी अपनी पसंदीदा लिपस्टिक के लाल रंग से
0: अरे क्या बात
2: नए ढंग से लफ्ज़ मोहब्बत लिख के भेजा था, जिस पर तुमने कभी अपनी पसंदीदा लिपस्टिक के लाल रंग से एक नए ढंग से लफ्ज़ मोहब्बत लिख के भेजा था, वो कब का भीग चुका है। मेरी आवाज आ रही है आपको?
0: जी जी आपकी आवाज आ रही, मैं सुन रहा जी।
2: अच्छा, वो कब का भीग चुका है, किसी सीलन जगह दीवार की मानिंद सस्ता पड़ा है उस कोरे कागज पर, वो लाल रंग का पलस्तर कई जगहों से उखड़ गया है, वो मिले तो उससे कहना वो कागज मुझे बहुत महंगा पड़ा है।
0: क्या बात है जी, क्या बात सर, बड़ा मजा आया ये आखिरी कुछ कॉल्स का, और बहुत शुक्रिया आपका, नेक्स्ट टाइम जरूर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर गपशप होगी, ठीक है?
2: जजाकल्ला,
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों की कॉल का। 1:54 हो चुके हैं, कुरतलैन बलोच क्या कह रही हैं, थोड़ा सा सुनते हैं इनको।

0: This is FM 101, where your spirit is set free.
1: 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

क्या उन्होंने अपने सरों पर उड़ते जानवरों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? अल्लाह के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज को देख रहा है।